एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 33 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।

0: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनिएगा हिंदी में समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित समावेश

0: और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एआई की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता सीईटीए इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में प्रथम नमन जगपालक भगवान विष्णु को।

जब हमारा मन दुखों से हारने लगे, घबराने लगे, तब हमें प्रभु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वे ही हमें हर मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं, हमें साहस दे सकते हैं जीवन की मुश्किलों से बाहर आने का। तो प्रभु की शरणागत होइए।

ये मानव जीवन हमें प्रभु नाम सुमिरन के लिए मिला था, लेकिन हम इस संसार में आने के बाद प्रभु का नाम लेना भूल गए। तभी तो कहा गया है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लेकिन हमें प्रभु का नाम सुमिरन ही करना चाहिए ताकि हम भव सागर से पार लग सकें।

प्रभु को भी संसार की अटखेलियाँ अच्छी लगती हैं, तभी तो वे भी आ जाते हैं इस संसार में माया का ये खेल रचने। और ऐसे ही ये माया है जो राधा और कृष्ण के बीच की अटखेलियाँ इस भजन में दिखलाती है।

इस संसार में यदि कोई हमसे रूठ जाए तो हम फिर भी मना लें, लेकिन अगर हमारा ईश्वर ही हमसे रूठ जाए, हमारे भगवान ही हमसे रूठ जाए, तो उन्हें कैसे मनाया जा सकता है? उन्हें केवल प्रेम, भक्ति और समर्पण से मनाया जा सकता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। संगीत निर्माण सतीश भाटिया का है, प्रस्तुति स्वर सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल का है।

वाणी जैसे अवरुद्ध हो गई। दोनों भाइयों के चरण पखार कर शबरी ने उन्हें कंद मूल और फल अर्पित किए। अपने को नीच और मंदबुद्धि जानकर शबरी प्रभु की स्तुति करने में स्वयं को असमर्थ पाती है, किंतु उसके लिए तो मात्र भक्ति का ही संबल पर्याप्त है। जाति पाति, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य तथा अन्य गुण होने पर भी भक्ति के बिना मनुष्य वैसा ही होता है जैसे बिना जल वाला बादल। शबरी का असमंजस देख श्री राम उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी प्रभु कथा में प्रेम, तीसरी अभिमान छोड़कर गुरु चरणों की सेवा और चौथी भक्ति है प्रभु का गुणगान। प्रभु में दृढ़ विश्वास और राम नाम का मंत्र जाप पांचवी भक्ति है। छठी है इंद्रियों का निग्रह। सातवीं संपूर्ण जगत को राममय जानना। भक्ति का आठवां रूप है जो मिल जाए उसमें संतोष करना। और नवीं भक्ति है कपट रहित व्यवहार, सरलता, इष्ट में भरोसा, निष्ठा तथा प्रत्येक अवस्था में हर्ष विषाद से ऊपर उठ जाने की क्षमता।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। संगीत निर्माण सतीश भाटिया का था और प्रस्तुति स्वर थे सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। विक्रमी संवत 2083 की ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि तदनुसार 18 जून 2026। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई आज के दिवस की, और आइए अब सुनते हैं ये देशगान।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, संदेशों से पहले आपने सुना देशभक्ति का गीत। FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारी केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 6:20 पर गीता संदेश के अंतर्गत सुनिएगा श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 से श्लोक 23 से 26 की व्याख्या, प्रस्तुति डॉक्टर रेणु वत्स की रहेगी। युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:30 पर, जिसमें आज आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता। विषय होगा योग रखे निरोग, विशेषज्ञ श्रीमती विभा रानी। शाम 6:30 पर समय रहेगा किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का, और शाम 7 बजे हम लाएंगे कार्यक्रम ग्राम संसार। हरियाणवी लोकगीतों का कार्यक्रम होगा सुबह 7:40 पर।

सुगम संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता सुनिएगा शाम 7:45 पर। गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम स्वरांजलि का समय रहेगा 9:30 पर। सुबह 8:30 पर हम लाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे, जिसमें आज आपको जानकारी देंगे सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस के बारे में। साथ ही सुनिएगा जानकारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शहीदी दिवस पर और गुरु अर्जन देव की शहादत दिवस पर। आप सभी श्रोताओं को हमसे जोड़ता कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र होगा सुबह 10:00, जिसमें आज आपको जानकारी देंगे हरियाणा के खनिज स्रोतों का शहर महेंद्रगढ़। साथ ही आपसे चर्चा करेंगे अधिक तले हुए व मसालेदार भोजन से करें परहेज विषय पर। सुनिएगा जानकारी प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने होगा शाम 5:05 पर। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का समय रहेगा रात्रि 8:00 और रात्रि 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम जय जवान। रात्रि 10:00 हम लाएंगे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम वंदना आप सुनते हैं रोजाना सुबह 6:05 पर। श्री रामचरितमानस का समय रहता है सुबह 6:35 पर। कार्यक्रमों का विवरण आपको दिया जाता है दिन में 2 बार, एक सुबह 6:45 पर और शाम 5:00। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:55 होने ही वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनिएगा संस्कृत में समाचार। 7:00 होंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिशायाः च पञ्चदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिशायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा क्यूनो राष्ट्रीय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्याम खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामीषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 66-200 कोटि जनाः तीव्र खाद्य असुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिंता प्रदर्शिता यत् 20-22 परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यंकांतरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाखड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओं, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
4: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। ना, जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना।

0: और तुम्हें क्या चाहिए
1: है? माँ के पास बताओ क्या है,
0: तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
2: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वो बोली,
3: मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो हा? तुम मुझे नहीं जानती हो?
3: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो
0: हा?
3: मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
3: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
3: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
0: अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
3: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है, तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
3: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
3: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
3: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
3: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
3: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है,

0: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
1: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा। ना, ना, ना।
0: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़े देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार, नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हरियाणवी लोकगीतों का कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा, जिसमें हमारे आज के कलाकार हैं शीशा सिंह और साथी।

कर कै मेरी खोसले बनजारी नू तेरे आगे

तेरे सेती और अज करी से चात राख दे।

अरे राजा गिल्या करूं लड़ाई नहीं लड़न का सामा पलटन फोजे रेसाल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: बोलो ना भाई।
2: न्यू बोलिया रे बुढ़ा बुढ़िया तरस के मर गे कदे उनका दुख बताया ना।

ਮਾਰੇ ਨਾ ਲਿਆਏ ਦਵਾਈ, ਹੋਇਆ ਬਿਮਾਰੇ ਨਾ ਲਿਆਏ ਦਵਾਈ, ਕਹਿ ਆਯੂ ਆਪੇ।

0: अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोकगीतों का कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा, जिसमें हमारे आज के कलाकार थे शीशा सिंह और साथी। FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय प्रातः के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में सुनिएगा हिंदी में समाचार। 8:15 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
5: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
6: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
4: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
7: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
4: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
8: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
4: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एआई की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
9: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
4: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
10: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
11: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
12: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।

0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उरांव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है, तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
1: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है, तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
3: We have a huge pool of talent.
4: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
5: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है।

0: लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण। पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक एक, रिकॉर्ड 10। उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क। केंद्र सरकार ने कहा, टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोकसत्ते ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 177 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend VivaTech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in French capital. President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
3: India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
4: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
2: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We hear more from our correspondent.
5: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that

जी हाँ श्रोताओं, सुबह सिर्फ जल्दी जागना ही काफ़ी नहीं, हमें अपनी सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए सुबह उठकर अपने लिए कुछ काम भी करने पड़ते हैं। भाई वो काम घर के घरेलू कामों की बात नहीं हम कर रहे, वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले हमें अपने लिए समय निकालना होता है, यानी थोड़ी वॉक करनी चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम अपने आप को फिट रख सकें। और फिट रखने की बात हो रही है तो भाई साइकिलिंग बहुत ज़रूरी होती है फिट रखने के लिए अपने आप को, है ना। तो साइकिलिंग आज के समय में तो बहुत कम हो गई है क्योंकि अब तो हम साइकिल लेकर कभी बाहर जाते ही नहीं, लेकिन ये जरूरी बहुत है। और इसी बात के औचित्य को समझाने और दिखाने के लिए समुद्र किनारे साइकिलिंग यानी साइकिलिंग बाय द सी का आयोजन किया गया। और इस आसान से प्रश्न का ही जवाब आपको देना है कि ये आयोजन कहाँ किया गया। हमारे इस प्रश्न का जवाब दीजिए 94661 336 पर।

श्रोताओं, आइए अब आपको कार्यक्रम में जानकारी देते हैं भारतीय वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिनके जीवन से हम सभी प्रेरणा पाते हैं। श्रोताओं, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को मराठा शासित झांसी राज्य की राज्य में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी आज के दिन 18 जून 1858 को, यानी आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का शहीदी दिवस है और उन्हें नमन। श्रोताओं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी जिन्होंने 1857 में पहली क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ शुरू की थी और केवल 29 वर्ष की आयु में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से उन्होंने युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई।

सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां तो हम सभी ने अपने जीवन में सुनी हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, ऐसा ही था उनका व्यक्तित्व, जिनके जीवन में डर और भय नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य से लोहा लेते हुए भी ऐसी कोई बात अपने भीतर नहीं आने दी। श्रोताओं, उनके जीवन की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मनु था, मणिकर्णिका। उनकी माँ भागीरथी बाई और पिता मोरोपंत तांबे थे। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। उनकी माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। उनकी मृत्यु के बाद ही उनके पिता यानी मनु के पिता मोरोपंत तांबे ने उनकी देखभाल की, उन्हें संभाला और इसके साथ ही वे बाजीराव द्वितीय के दरबार में उन्हें ले जाने लगे, जहां उनके चंचल स्वभाव को देखकर उन्हें प्यार से छबीली बुलाया जाता था। यहीं से उन्होंने शास्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन 4 माह के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह हुई, लेकिन उनके इस पुत्र को गोद लेने के समय 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन अंग्रेजी राज्य की राज्य हड़प नीति के कारण बालक दामोदर राव को उनका हक नहीं मिला, जिससे रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने अपनी झांसी को न छोड़ने का फैसला किया और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने राज्य की सुरक्षा करने का निश्चय लिया। और अंग्रेजों के साथ इसी युद्ध को करते हुए ही आज ही के दिन 18 जून 1858 को झांसी की इस वीर वीरांगना ने शहीदी प्राप्त की। झांसी की रानी के जीवन से हम सभी को बहुत कुछ सीखना चाहिए। वीरता, पराक्रम, अपने राज्य, अपने देश की रक्षा और साहस, ये गुण उनमें कूट कूट कर भरे थे और हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई को हमारा शत शत नमन।

देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

श्रोताओं, आज है 18 जून और आज के दिवस की और थोड़ी सी जानकारी आइए आपको देते हैं। श्रोताओं, आज के दिवस को सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और गैस्ट्रोनॉमी डे आखिर होता क्या है ये बतलाते हैं आपको। श्रोताओं, गैस्ट्रोनॉमी डे है भोजन से बर्बादी के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना और अपनी पेट के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना, इसे इसके लिए हमें प्रेरित करता है। श्रोताओं, विश्व गैस्ट्रोनॉमी दिवस लोगों को एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, जहां हम सभी रोगों से मुक्त रह सकें। और हम रोगों से मुक्त तो तभी रह पाएंगे ना, जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और हमारा स्वास्थ्य जुड़ा होता है हमारे पेट से, हमारे स्टमक से। अगर हमारा पेट स्वस्थ है तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और इसी जागरूकता के लिए आज के दिवस को मनाया जाता है। तो श्रोताओं, अगर हमें अपने पेट को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए हमें अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। और किस तरह से हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं ये बताते हैं। श्रोताओं, जब हमारा पर्यावरण अच्छा होगा, यहाँ पर्यावरण के अनुकूल ही खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, टिकाऊ कृषि होगी और खाद्य अपशिष्ट को कम किया जाएगा, तभी आज के दिवस को मनाया जाना सार्थक हो सकता है। और इसे वैश्विक स्तर पर सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओं, ये बात ये प्रकाश डालती है कि हमारी जो खाद्य पसंद है, हम क्या अपने भोजन में लेना चाहते हैं, हम अपनी थाली में क्या परोसते हैं, ये उससे जुड़ा है। फसल की कटाई से लेकर हमारी थाली तक जब भोजन पहुंचता है तो उसमें पर्यावरण, जैव विविधता और स्थानीय लोगों का बहुत हाथ होता है। और इससे हमारी स्वास्थ्य किस तरह से प्रभावित होता है, इस सभी बातों का ध्यान वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी दिवस की तरफ ध्यान दिलाता है। और श्रोताओं, आज के दिवस को मनाए जाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2016 में। और इसे वैश्विक स्तर पर इसका नेतृत्व किया जाता है खाद्य और कृषि संगठन और यूनेस्को के द्वारा। और सतत गैस्ट्रोनॉमी के सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहले अगर हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने पेट के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो हमें भोजन में क्या लेना चाहिए इस ओर ध्यान दिलाता है। इसीलिए स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए। भोजन से जुड़े कार्बन फुटप्रिंट को भी हमें कम करने के लिए ध्यान देना चाहिए और इसके लिए किसानों को भी जागरूक होना चाहिए, यही आज के दिवस का उद्देश्य भी है। इसके साथ साथ बदलती जैव विविधता की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, जैव विविधता का संरक्षण हमें करना चाहिए। इसमें स्वदेशी और जलवायु के अनुकूल होने वाली फसलों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए, जिसमें अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ बाजरा जो है, गेहूं, चावल, ये अत्यधिक मात्रा में होते हैं। लेकिन जो बाजरा है ना, वो मुख्य रूप से हमारे देश की फसल है। और जब हम बाजरा को यानी मोटे अनाजों को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, अपनी थाली में शामिल करते हैं, तो फिर हमारा स्वास्थ्य, हमारी जो गट हेल्थ है, हमारी जो स्टमक की हेल्थ है, वो अच्छी रहती है, हमारा पेट का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और इसीलिए आज के दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य हमारे स्वास्थ्य, हमारे पेट से जुड़ा है और इसीलिए इसे विश्व गैस्ट्रोनॉमी दिवस कहा जाता है। तो श्रोताओं, हम सभी सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस के उद्देश्य को सार्थक जरूर करेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने पेट के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, ताकि हम स्वस्थ हो सकें। और इसके लिए हमने आपसे शुरू से बात की थी ना कि हमें प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और अपने मनोरंजन का भी ध्यान रखना चाहिए। वो ध्यान तो वही आपका आकाशवाणी कुरुक्षेत्र भी बहुत रखता है और इसीलिए आपके लिए खूबसूरत कार्यक्रम लेकर आता है। तो चलिए इस खूबसूरत कार्यक्रम सुबह सवेरे में सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं, आज कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे प्रश्न किया था कि समुद्र किनारे साइकिलिंग यानी साइकिलिंग बाय द सी का आयोजन कहाँ किया गया। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है मुंबई के वर्ली तटीय साइकिलिंग ट्रैक पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं श्रोताओं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और अधिक सक्रिय राष्ट्र के निर्माण के अनुरूप मुंबई के वर्ली तटीय साइकिलिंग ट्रैक पर फिट इंडिया साइक्लाथॉन का आयोजन किया गया। और थोड़ी सी जानकारी आपको और देते हैं।

इस आयोजन में फिटनेस के शौकीन, साइकिल चालक, युवा और बहुत से लोगों ने अपनी भागीदारी बढ़ाई और हमारे प्रश्न का सही जवाब जिन लोगों ने दिया कि वर्ली तटीय मुंबई के साइकिल ट्रैक पर इस साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया जिसे समुद्र किनारे साइकिलिंग कहा गया। जिन श्रोताओं ने हमारे आज के प्रश्न का सही जवाब भेजा है अब आपको बता देते हैं उन सभी श्रोताओं के नाम। आज हमें सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं अश्वनी कराडिया, कृतिका कराडिया और सूबेदार अमरनाथ जिन्होंने सही जवाब भेजा है रविदास नगर थानीसर सिटी कुरुक्षेत्र से। फिर हमें सही जवाब भेजा अकले दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी ने। टिया और कृष्णा हैं सोलन हिमाचल प्रदेश से। लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हमारे श्रोता हैं सिद्धार्थ गोंडानी, अर्चना ताई गोंडानी, हीरामन शेंडे और प्रणय प्रसिद्धि। मुंबई सही जवाब दिया है मुंबई बीपी गौतम, सरिता गौतम, नी एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। भाना ब्राह्मणा वाला नरवाना से हैं मेघराज शर्मा। प्रबुद्ध मंडल फ्रेजरपुरा अमरावती से हैं महेश राम टेके, ज्ञानेश्वर राम टेके और निर्मला राम टेके। सही जवाब भेजा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, ध्वनि छाबड़ा, सानवी और समस्त छाबड़ा परिवार। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे और मायरा सुरोशे। फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, हियांश कुमार चंदन हैं सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से। योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से हैं रवि कुमार, राहुल रंजीत कौर और गुरशब्द सिंह राहुल। और जगुड़ी से हैं रणधीर बांगड़ युगम और नागल से हैं इंद्राज। नजफगढ़ नई दिल्ली से हैं सुमन, गौरव शर्मा और सौरभ शर्मा। गांव सांतड़ी से मदन काम्बोज, प्रियांशु काम्बोज और स्मृत काम्बोज। जयश्री और सुनील हैं बेंगलोर से। सेक्टर दो आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से हैं पवन गौड़, सुयश गौड़ और आशीष गौड़। सही जवाब दिया है दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा और पारस मणि वर्मा ने। और सौराष्ट्र राजकोट से हैं परवीन गुजराती, जगदीश गुजराती और हिरेन भाई। तेजपाल सिंह प्रजापति हैं चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से। उमेश सांगवान हैं पैंतावास कला जिला चरखी दादरी हरियाणा से। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार। कासगंज उत्तर प्रदेश से हैं अनुपमा, कुसुम और अपूर्वा। सही जवाब दिया है कार्तिके पानू ने, जिमी शेख ने, डोगेस शेख ने ब्राज़ील सिटी साउथ अमेरिका से। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और बीबी फातिमा गाजी। सही जवाब भेजने वाले श्रोता हैं डोंडी लोहारा से तुषार डोम, आरती डोमेन और खंडवा से निशा जाटव। सरिता मोरे और गौतम बी प्रकाश, कुश गौतम है साई विहार रामपुर से। गजराज पानू, कार्तिकेय पानू, हर्षित पानू हैं फुरलक जिला करनाल से। पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सतेंद्र कुमार चंसौलिया। जेवरा हिसार से हैं वीरेंद्र भयान, सुरेंद्र भयान, शमशेर भयान और मनोज भयान। सही जवाब दिया है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया और सोनू भाटिया ने। संबलपुर काकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। भुवन प्रकाश गौतम, शेर गौतम हैं गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। कविता साहू, प्रमोद कुमार साहू हैं ग्राम कदुआपरा जिला जगत सिंहपुर ओडिशा से। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार राय। सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। एस एम जावेद हैं गुमला झारखंड से। सही जवाब भेजा है बुडलाना महाराष्ट्र से नारायण हागे और जय हागे ने। सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं ग्राम बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से
बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा। सही जवाब दिया है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, शबनम और असमानाज अंसारी ने। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से हैं विजय सिंह मोहबिया, कविता मोहबिया। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती और महादेव गढ़ी। उगाला गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार मलकीत को, आरती रानी और इनके साथ हैं राघव। गांव जाखोद से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, योगेश, दीपक कौर, कुमारी पूजा। पंचकुला चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और तुलसी मस्किन। दुर्गा कलानी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और सुभाष योगी। सही

भेजा है बालोदा छत्तीसगढ़ से दिलहरन गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल और स्मृति पटेल ने। संबलपुर काकेर से हैं फागुराम यादव ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कृष्ण कुमार गुप्ता हैं महोबा उत्तर प्रदेश से। सौराष्ट्र राजकोट से हैं प्रवीण गुजराती जगदीश गुजराती जी आपके नाम तो हो गए थे। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेखरला बख्श और राजेश सांबले पाटिल। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिकार्यन वर्मा। लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पपी किरण खुराना लव्या आरव खुराना और एसके पपी। सही जवाब दिया है ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पंवार बेनजीर कौसर मोहम्मद हसनैन पवार ने। मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन अब्बासी शहनवाज और सरफराज अब्बासी हैं ऊपरकोट बुलंदशहर से। गांव ढानी कुतुबपुर जिला हांसी से हैं रामधारी अवाना अनाया और ओजस अवाना। माघीराम सैनी पूनम सैनी हैं प्रतापगढ़ धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हैं संतोष खड़ से और विनोद खड़ से। वंडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस पिंकी और लवली। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा निमित और दिशानी ने सही जवाब दिया। हनुमंत शिंदे और ऋषिकेश शिंदे हैं सांगली से। रादौर से हमारे श्रोता हैं राजकुमार पुजारा अनीता पुजारा और साहिल पुजारा। सही जवाब दिया है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी मधु गोस्वामी ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा भाई शायद आपके नाम भी हो गए थे। एस एम जावेद हैं गुमला झारखंड से। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं वसीम वली चामोरिया असलम वली चामोरिया और सरफुद्दीन वली चामोरिया। शास्त्री नगर बीर शहर से हैं किशन सपकाल आशा सपकाल और विशाल सपकाल। अक्रम हुसैन प्रिंस डाकबाबू बेगम इशरत अक्रम वसीम अक्रम रुबीना वसीम और आरिज वसीम हैं नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास आशा देवी और वर्षा सुमन। आरसी कामड़े और करुणा कामड़े हैं मुंबई से। सही जवाब दिया है ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा और पूनम वर्मा ने। गांव उगाला जिला अम्बाला से राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती रानी और राघव। बालोदा छत्तीसगढ़ से दिलहरन गौतम अंजलि आनंद और स्मृति पटेल। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे संगीता घटे अंजलि करवा और बाला साहेब करवा। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढिंगिया और नमन ढिंगिया। सादुल शहर राजस्थान से हैं रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा नरेश मल्होत्रा नीटू भावना मल्होत्रा अनिल कटारिया खैल बाजार पानीपत से। तो भाई आप सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद आज के प्रश्न का सही जवाब देने के लिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
6: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
5: क्या ये जांच उपलब्ध है?
7: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
8: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
7: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
8: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
9: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
10: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
11: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
10: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
11: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
10: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
11: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
10: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
11: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.ACI.gov.in पर जाएं।
12: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं गुरु अर्जन देव शहादत दिवस के बारे में। श्रोताओं, गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस आज के दिन 18 जून को मनाया जा रहा है। सिख धर्म के पांचवें और पहले शहीद गुरु का ये शहादत दिवस त्याग, शांति और धर्म के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। श्रोताओं, सिख धर्म के प्रचार प्रसार में अतुलनीय योगदान देने वाले गुरु अर्जन देव जी ने 1581 से 1606 तक सिख समुदाय का नेतृत्व किया था।

मुगल बादशाह जहांगीर के बेटे खुसरो को गुरुजी से कथित समर्थन प्राप्त होने के कारण जहांगीर उनसे नाराज हो गया था, जिससे उन पर भारी जुर्माना लगाया गया, जिसे देने पर इनकार करने पर लाहौर में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई और जलते हुए गर्म तवे पर उन्हें बिठाया गया। उनके सिर पर उबलता हुआ रेत और सीसा डाला गया, जिनके परिणाम स्वरूप वे आज के दिन शहीद हो गए थे।

गुरु अर्जन देव के योगदान की बात की जाए तो उन्होंने ही सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया और हरिमंदिर साहिब जो कि अमृतसर में प्रसिद्ध हरिमंदिर साहिब जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है की नींव रखने वाले गुरु अर्जन देव जी ही थे।

0: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: मंगल भवन मंगल हारी।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
0: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
5: तो श्रोताओं, सबसे जरूरी होता है हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और ये हमने आपको शुरुआत में बताया भी था। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम प्रसन्नचित रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इसके लिए हमें थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमने आपसे आज का प्रश्न भी इसी से जुड़ा पूछा था कि हमें साइकिलिंग करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अब जो है वो हम साइकिलिंग करते नहीं। साइकिलिंग करना, योग करना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, और योग तो आपने शुरू कर दिया होगा, करते भी होंगे, लेकिन जो हमारे श्रोता नहीं करते उनके लिए एक अच्छा मौका है। देखिए, अभी योग दिवस आने ही वाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। हमारे ही देश की शुरुआत हुई थी, हमारे ही देश से शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की। तो इसे भी अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए कार्यक्रम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से। और अब आज के कार्यक्रम सुबह सवेरे को संपन्न करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। लेकिन इस आखिरी गीत के साथ, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव, शिकायत, प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा पता है आपकी बात आकाशवाणी @gmail.com। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं राजेश्वरी सचदेव को।

0: भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: मंगल भवन मंगल हारी।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: तुरिया तुरिया तुरिया तुरिया।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम स्वरांजलि में आइए अब सुनते हैं कैलाश खैर को।

0: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
0: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
1: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
0: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
1: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक PLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वरांजलि आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से, और कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फाल्गुनी पाठक को, पर उससे पहले सुनिए ये संदेश।
1: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
0: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
0: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
1: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
0: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
1: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक PLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

श्रोताओं, सावन का महीना आने में तो बेशक कभी समय है, लेकिन फाल्गुनी पाठक के इस गीत ने जरूर आपको सावन की बूंदों से तिरोहित किया होगा। और इसी गीत के साथ ही अब आज के कार्यक्रम स्वरांजलि को संपन्न करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें रहता है इंतजार। आपकी बात आकाशवाणी@gmail.com पर जरूर भेजिएगा आपकी प्रतिक्रियाएं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय सुबह के 9:45 हुए जाते हैं। अब आप सुनिएगा विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।

गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भूभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

0: श्रोताओं, आज का कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ मैं अनुराधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र सजीव फोन इन कार्यक्रम है, जिसमें हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी पसंद का गीत सुनते हैं और विषय पर बातचीत भी कर सकते हैं। और हम आपके लिए नई नई जानकारियों के साथ इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर होते हैं। तो भाई, कई बार हम अपने श्रोताओं को बातचीत भेंट वार्ता भी सुनवाते हैं और हमारे विशेषज्ञ से भेंट भी करते हैं। तो श्रोताओं, आज विषय के साथ साथ हमारे स्टूडियो में हमें विषय कॉमन योग प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रजनी बाली जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो इस विषय पर पहले हमें जानकारी देंगी, बाद में हम अपने श्रोताओं से बातचीत करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला विषय है कॉमन योग प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर रजनी बाली जी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर रजनी बाली आज योग विषय पर आपसे चर्चा करूँगी।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि कॉमन योग प्रोटोकॉल, तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कॉमन योग प्रोटोकॉल क्या है, योग करते हुए इसे कैसे फॉलो किया जा सकता है।
1: योग प्रोटोकॉल आयुष विभाग भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया एक अभ्यास क्रम है, जिसे हर आयु वर्ग के लिए बहुत ही सशक्त और अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
0: जी, तो सामान्य योग प्रोटोकॉल यानी कॉमन योग प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है और इसे कब से शुरू किया गया?
1: सामान्य योग प्रोटोकॉल जो है वो 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और इसका उद्देश्य जो है वो लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, वर्ष के लिए कोई थीम भी रहता है, तो अभी जैसे वर्ष 2026 है, इसका जो योग दिवस का थीम है वो हम आपसे जानना चाहेंगे और इस थीम को किस तरह से सार्थक किया जा सकता है।
1: इस साल का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारा स्वास्थ्य भी जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भारत सरकार ने उन सभी लोगों के लिए, हेल्दी एज के लिए, लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए ये थीम दी है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाए, हम शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने आप को संतुलित कर सकें।
0: जी, और जो ये कॉमन योग प्रोटोकॉल है, क्या इसकी शुरुआत किसी प्रार्थना या मंत्र से होती है? तो उसके बारे में भी हमें बताइए।
1: इस प्रोटोकॉल की जो आरंभ है वो प्रार्थना के साथ किया जाता है, जो ऋग्वेद के मंत्र हैं, और वो मंत्र है

0: भागं यथा पूर्यते संजानाना उपासते।
1: जी, तो जैसा कि आपने हमें ये मंत्र भी बताया और कोमन योग प्रोटोकॉल जो है इसका, जैसे आपने बताया कि कुछ निर्धारण किया जाता है, तो हम इसका कुल समय कितना होता है?
0: इसका समय सभी के लिए 45 मिनट्स, 45 मिनट का रखा गया है, जिसमें हर वर्ग के आयु के लोग जो हैं इसे बड़े ही आसान तरीके से कर सकें।
1: जी, तो डॉक्टर रजनी वाली जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कॉमन योग प्रोटोकॉल में जो योग है उनमें कौन कौन से पोज होते हैं, कौन से पोस्चर होते हैं, या फिर खड़े होकर किए जाने वाले जो आसन हैं वो कौन से हैं?
0: इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है इस अभ्यास को। जैसे पहले हम खड़े होकर करते हैं आसन, उसमें पहला आसन है ताड़ासन, जो हमारे पांवों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। उसके बाद पादहस्तासन है, अर्धचक्रासन है, त्रिकोण आसन है। ये सभी आसन जो हैं हमारे लेग्स को या बैलेंस बनाते हैं, बहुत ही स्ट्रेंथन करते हैं
1: जी।
0: ये खड़े होकर करने वाले आसन है
1: जी। और कॉमन योग प्रोटोकॉल में बैठकर किए जाने वाले आसन कौन कौन से?
0: बैठकर किए जाने वाले आसनों में पहला आसन भद्रासन, वज्रासन, उत्तान मंडूकासन और वक्रासन है। ये हमारे बॉडी को ट्विस्टिंग देते हैं, हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल करते हैं, हमारी जो बैक बोन है इन आसनों को करने से बहुत ही लचीली बनती है।
1: जी, और पेट के बल लेटकर जो किए जाने वाले आसन या फिर पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं, उस पर भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे।
0: हाँ, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में पहला मकरासन, भुजंगासन, अर्धशलभासन। जिस तरह से हम पेट के बल लेटकर आसन करते हैं, तो अगर वो किसी को कमर में बहुत ही दर्द रहता है तो इन आसनों से उसे बहुत ही आराम मिलता है। इसी तरह पीठ के बल लेटकर करने वाले आसनों में उत्तानपादासन, अर्धहलासन, सेतुबंधासन, ये सभी आसन जो हैं हम पीठ के बल लेटकर कर सकते हैं।
1: जी, प्राणायाम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्राणायाम क्या होता है इसके बारे में भी बताइए।
0: प्राणायाम जो है ये दो शब्दों के मेल से बना है, प्राण और आयाम। दैट मीन्स कि हमें अपने प्राणों को नियंत्रित करना है। ऐसा माना जाता है कि हम पूरे 24 आवर्स में 20,000 से 30,000 बार सांस लेते हैं
1: जी।
0: और जब हम इतनी तेज गति से सांस लेंगे तो हमारी आयु भी बहुत कम होती चली जाएगी। तो हमें प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों को नियंत्रित करना है, जिससे हम दीर्घायु हों, हमें किसी भी तरह की कोई श्वास से संबंधित प्रॉब्लम ना हो।
1: जी, और कॉमन योग प्रोटोकॉल का समापन किस प्रक्रिया के साथ होता है?
0: योग प्रोटोकॉल का समापन शांति पाठ से किया जाता है, जिसमें हम सभी इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत। जिसका अर्थ है कि हम सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और जीवन में किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो।
1: जी, तो कुछ ही दिनों में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, इस पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अभी कुछ ही समय में 21 जून को हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और आप सबसे एक आग्रह भी करूँगी कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योग दिवस को मनाने के लिए बहुत ही प्रयास किए, इसे हमें आगे बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल योग दिवस के आसपास ही योग का अभ्यास ना करें, हमें पूरा साल इसका अभ्यास करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे स्वस्थ रहने से ही हमारा समाज स्वस्थ होगा और हम देश की उन्नति में सहयोगी बनेंगे।
1: जी, तो आपका धन्यवाद। आज आपने कॉमन योग प्रोटोकॉल पर हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराधा जी।
1: चलते चलते हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का एक गीत सुनवाना चाहेंगे, तो प्लीज़ बता दीजिए आप कौन सा गीत सुनवाना चाहते हैं हमारे श्रोताओं।
0: मेरा पसंदीदा गीत है जीवन चलने का नाम, क्योंकि हमें जीवन में गति बहुत ही जरूरी है, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए।
1: जी, धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।

0: जी हाँ श्रोताओं, हमें जीवन में चलना तो चाहिए और हम भी अब कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं आज के विषय। श्रोताओं, हमें अधिक तले हुए और मसालेदार भोजन से परहेज करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और जैसे कि आजकल की हमारी जीवन शैली है या हमारा स्वास्थ्य है, तो उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये ध्यान रखें कि हम बाहर का तला हुआ न खाएं, अधिक मसालेदार भोजन न लें, क्योंकि मसालेदार भोजन हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और इसी विषय पर हम अपने श्रोताओं से करेंगे बातचीत। और अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, आइए सुनते हैं उनकी बात। हेलो
1: जी, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार, कौन से श्रोता जुड़े हैं?
1: मुरादाबाद से रणधीर सिंह।
0: मुरादाबाद से रणधीर,
1: यूपी से रणधीर सिंह।
0: जी रणधीर,
1: जी रणधीर सिंह जो हीरो फिल्म का आपने।
0: जी रणधीर जी, क्या करते हैं आप? पहली बार फोन लगा आपका?
1: जी
0: पहली बार फोन लगा है क्या?
1: नहीं पहली बार नहीं लगा मैम, पहले लगा था काफी पहले।
0: अच्छा, काफी पहले आपने लगाया था। तो अभी आप क्या करते हैं?
1: जी कॉपी किताबों का काम करते हैं मैम।
0: जी तो इस समय आप अपने काम पर हैं या फिर घर पर कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: जी अभी जाने की तैयारी है, आपके प्रोग्राम सुनना है रेडियो पे।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: जी फिल्म सिर्फ तुम का गाना है।
0: सिर्फ तुम से गीत सुनना चाहते हैं। एक बार गीत के बोल बता दीजिए।
1: जी जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम।
0: चलिए आपकी पसंद पर सिर्फ
1: तुम। कुछ कहना चाहते हैं मैम?
0: हाँ जी बोलिए। हेलो।
1: जिंदगी में कुछ दोस्त खास बन गए।
0: जी
1: जिंदगी में कुछ दोस्त खास बन गए, मिले तो मुलाकात बिछड़े तो याद बन गए।
0: जी
1: कुछ दोस्त धीरे धीरे फिसलते गए।
0: जी
1: पर जो दिल से न गए वो आप बन गए।
0: जी धन्यवाद। और आपकी पसंद का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे
1: हैं। फोन हम आपको 90 साल पूरे होने पर आपको बधाई देते हैं आकाशवाणी के।
0: जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सभी श्रोताओं के साथ ही जो आकाशवाणी है, आप भी आकाशवाणी का हिस्सा ही हैं और आप सभी के लिए ही कार्यक्रम लेकर आते हैं हम, है ना?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: नमस्कार जी, मैं इंद्राज गौन अब्दुल से।
0: जी इंद्राज जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: ठीक ठाक जी, बढ़िया तंदुरुस्त।
0: जी बिल्कुल बढ़िया और तंदुरुस्त।
1: गर्मी
0: होना
1: बहुत हो
0: चाहिए।
1: रही।
0: हाँ जी
1: हाँ जी,
0: बिल्कुल तंदुरुस्त होना चाहिए। और तंदुरुस्ती के लिए ही एक बात और हम आज अपने श्रोताओं से कर रहे हैं कि हमें अधिक तले हुए भोजन का और मसालेदार भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल जी, हमारे पास जो अपना बाहर घूमे जी, उज्जैन साइड गए थे जी, हमारे पास अपना हलवाई था इंदौर से।
0: अच्छा जी,
1: बड़ा शानदार खाना बनाया जी, क्या पूछा बात। जलेबी, दाल चावल, कड़ी चावल
0: जी,
1: आलू छोला
0: जी,
1: बड़े शानदार सब्जी बनाई जी।
0: ये आप जो इतनी रेसिपीज बता रहे हैं ना, हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनका भी मन कर जाएगा खाने का।
1: हाँ जी जी
0: हाँ जी, तो हम यही बात कर रहे हैं कि हमें जो बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से, तला भुना खाने से बचना चाहिए। घर का हो, साफ सुथरा हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर भी खा रहे हैं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, है ना?
1: पूरा ध्यान होना चाहिए जी,
0: जी।
1: आजकल गर्मी बहुत है तो गर्म तेज मसालेदार चीजें खाने से पेट खराब हुआ जी।
0: जी बिल्कुल, और इसीलिए हमें अगर अपने स्वास्थ्य का ख्याल है तो हमें थोड़ा परहेज करना चाहिए। तो इंद्राज जी, आज कार्यक्रम में आप जुड़े हैं, बताइए कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आन मिलो सजना से है जी,
0: जी
1: रंग रंग के फूल खिले मुझे भाई कोई ना।
0: चलिए आपकी पसंद
1: जी, आपकी आवाज सुनकर
0: आपकी पसंद
1: जी, दोरे खड़े
0: गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: जो अगर मान गया बात कर लेगा जी।
0: हाँ जी
1: करना नहीं चाहता। अच्छा जी
0: जी धन्यवाद।
1: अच्छा जी,

0: श्रोताओं, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अधिक तले हुए और मसालेदार भोजन से हमें परहेज़ करना चाहिए या फिर कम लेना चाहिए, और क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र को, हमारे हृदय के स्वास्थ्य को और हमारे शरीर की समग्र ऊर्जा को प्रभावित करता है, और वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी हानि ही करता है। इसमें मौजूद अतिरिक्त वसा, तीखे मसाले हमारे शरीर को सूजन, एसिडिटी और गंभीर बीमारियों का शिकार बनाने का खतरा पैदा करते हैं। तो हमें अपने भोजन में तले हुए खाने को परहेज़ करना चाहिए, कम लेना चाहिए, और अत्यधिक मसालेदार भोजन भी नहीं लेना चाहिए। इस पर थोड़ी सी जानकारी आपको और देंगे। अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो।
1: हेलो, हाँ जी मैडम, नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़े?
1: हेलो, पटियाले से सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ जी।
0: जी पटियाला से सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में जुड़े हैं। कैसे हैं सुरेंद्र जी आप?
1: नमस्कार मैडम जी, मैं ना थोड़े ट्रैफिक में हूँ।
0: हाँ,
1: मेरे नाल लाडी सिंह धालीवाल आपको नमस्ते भेजा समाणा मंडी से।
0: चलिए जी, उनको भी नमस्कार और धन्यवाद, आपने नमस्कार पहुँचा दिया उनका।
1: हाँ जी
0: हाँ जी, तो सुरेंद्र जी अभी आप अपनी
1: बाहर आई पिक्चर का सुना दो।
0: हाँ जी,
1: आप आए बाहर आई,
0: आप आए बाहर आई फिल्म से गीत आप सुनना चाहते हैं, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी
0: जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता।
0: चलिए, आपकी पसंद पर ये खूबसूरत गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम जी, शुक्रिया। ओके जी।

0: मालिनी दीदी, सारा सब पे प्यार है, नमस्कार
1: जी। नमस्कार, कौन से श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में जुड़ रहे हैं?
0: जी दीदी, मैं आपका पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मत उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
1: जी बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं शारदा प्रसाद जी?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, और आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है। आप लोगों से वार्तालाप करके बेहद खुशी प्रसन्नता अनुभूत करता हूँ। मेरा हृदय प्रफुल्लित गदगद हो जाता है जब आकाशवाणी कुरुक्षेत्र मेरा फोन लगता है। मथुरा भी भगवान कृष्ण से संबंधित है और कुरुक्षेत्र भी भगवान कृष्ण से संबंधित है। वहाँ भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था और यहाँ लीला की थी, बाल लीला, क्रीड़ा स्थली और ये सब यहाँ पर उनका अवतार स्थली है।
1: जी बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपका फोन लगा और आपने इतनी कम समय में बहुत विस्तृत बात बता दी। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से लेकर कर्म भूमि का जो उन्होंने संदेश दिया सब आपने बतला दिया। तो शारदा प्रसाद जी, फोन लगाया आपने, बताइए आज कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है हम सब चोर हैं
1: जी,
0: इसमें बहुत ही सुंदर प्यारा सुरीला गीत है। सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, बहुत ही सुंदर सुरीला गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से प्रसारण हेतु।
1: चलिए आपकी पसंद पर ये खूबसूरत गीत हम आप तक पहुँचा रहे हैं, फोन करने के लिए धन्यवाद
0: जी। हृदय धन्यवाद, आभार, आपका दिन मैं हूँ, नमस्कार
1: जी, नमस्कार।

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: जी, कौन से श्रोता कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़े हैं?
1: मैम जी, आपकी आवाज बड़ी हल्की आ रही है। हेलो।
0: हेलो
1: हाँ जी, नमस्कार मैम जी। राजेंद्र
0: जी, नमस्कार। कौन से श्रोता कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में जुड़े हैं?
1: गंगवार, कस्बा कोड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: जी राजेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। बस आपका प्रोग्राम सुन रहे थे तो आप कहीं जाके लास्ट में कॉल लगी है तो दिल को खुशी मिली मैम जी।
0: जी, तो क्या करते हैं राजेंद्र आप?
1: अभी अभी तो खैर मकान का काम चल रहा है, वैसे मकान के काम से फुर्सत होती है तो जरी का काम करते हैं मैम जी।
0: अच्छा जी, तो आप मकान बनाने का काम करते हैं?
1: नहीं मैम जी, खुद का मकान बनना है।
0: अच्छा, आपका बन रहा है तो ठीक है, उसमें काफ़ी समय लग जाता है, समय भी कम मिलता है ना
1: हाँ मैम जी।
0: जी। तो बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा साजन और गाने के बोल रहेंगे देखा है पहली बार, और कुछ मित्रों के नाम लेना चाहते हैं मैम जी।
0: जी लीजिए।
1: हाँ जी, सबसे पहले आप रहेंगी इसमें, और हमारे भगवान सिंह परमार जी हैं, शाहरुख नूर अंसारी जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, अविनाश जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, गंगाधर सावंकर जी हैं, सोनू जी हैं, और आरजे पूनम जी कानपुर से हैं मैम जी।
0: चलिए, आपकी पसंद पर ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अपने इन सभी श्रोता साथियों के साथ सुनिए आपकी पसंद का साजन फिल्म का गीत। फोन लगाने के लिए धन्यवाद
1: नमस्कार मैम जी।
0: जी। नमस्कार।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, आइए अब चलते चलते आपको जानकारी दे देते हैं हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित महेंद्रगढ़ के बारे में, जो कि खनिज भंडार का जिला है। श्रोताओं, अरावली की पर्वतमालाओं में स्थित यह जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिससे विविध और प्रचुर मात्रा में धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जिनमें तांबा, लोह अयस्क, चूना पत्थर और स्लेट पत्थर प्रमुख हैं। श्रोताओं, महेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ कैल्साइट, फेल्सपार, क्वार्ट्जाइट, सिलिका सैंड, संगमरमर और बोरियम जैसे खनिज भी प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं। श्रोताओं, इसकी भौगोलिक स्थिति और भू संरचना हरियाणा के सबसे धनी खनिज उत्पादक क्षेत्रों में से इसे एक बनाती है। और तांबा, यहाँ की नारनौल और महेंद्रगढ़ की पहाड़ियों के नीचे सैकड़ों हेक्टेयर तांबा के अयस्क भंडार मौजूद हैं। और लोह अयस्क की बात करें तो यहाँ उच्च कोटि का मैग्नेटाइट भी मिलता है और चूना पत्थर भी यहाँ मिलता है। तो श्रोताओं,

ये जानकारी थी खनिज से प्रचुर हरियाणा के राज्य महेंद्रगढ़, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ के बारे में। और अब कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र को संपन्न करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय दिन की 11 बजे जाते हैं। अब आप सुनिएगा विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की गाए इस भक्ति गीत के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना, और आइए अब सुनते हैं बेगम अख्तर का गाया मिर्जा गालिब का ये

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए विशाल मिश्रा का गाया ये ओगा फिल्मी गीत। इसे लिखा है कौशल किशोर ने और धुन बनाई है विशाल मिश्रा ने ही।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं समीर का लिखा ये अगार फिल्मी गीत, आवाजें ऋचा शर्मा और साबरी बंधुओं की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं मिर्जा गालिब का ये कलाम।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने मिर्जा गालिब का ये कलाम सुना, और आइए अब सुनते हैं संत नानक देव का ये शब्द। गायिका है दिलराज कौर।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। इसे लिखा है रोचक कोहली ने।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में कुणाल वर्मा का ये गीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यह आवाज है असलम साबरी की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित। पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में 2रे 1-दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस सभा में, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है दोस्तों। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर यानी जाने माने संगीतकार मदन मोहन की संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। यह इस कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम दिल की राहें, गीतकार नक्श लाहिलपुरी।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म दिल की राहें का ये गीत सुना। गीतकार नक्श लायलपुरी और संगीतकार मदन मोहन थे। आइए अगला गीत सुनते हैं। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, स्वर लता मंगेशकर का, और फिल्म का नाम वो कौन थी।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है।

0: पुल के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है शराबी।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी अपनी फिल्म शराबी का ये गीत सुना। आइए इसी आवाज में अगला गीत फिल्म नौनिहाल से हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है जहां आरा, रचना राजेंद्र कृष्ण की और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाजों में यह था फिल्म जहां आरा का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म हंसते जख्म से हमने लिया है।

0: GI problem is education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है दस्तक।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है महाराजा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी अपनी फिल्म महाराजा का ये गीत सुना। गीतकार थे कैफी आजमी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाए। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

तो प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार जी। तो बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है जिंदगी का सफर? अच्छा चल रहा है ना? आहा, कभी कभी नाव हिचको लिखा जाती है ना? कोई बात नहीं, यही तो जिंदगी का असली सफर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफर कैसा होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप यही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ कि सफर तनाव मुक्त होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और साथ में एक प्यारा सा हम सफर भी होना चाहिए ताकि जिंदगी बहुत मजे से निकल जाए, क्यों है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर, क्योंकि इधर हम हैं और उधर आप, और मिलकर ये प्यारा सा सफर हम आज तय करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं समुद्री यात्रा पर। नौका विहार करते हैं। डरिए नहीं, डरिए नहीं भाई, आज के समय में भी समुद्री यात्रा खास तौर से आज के समय में काफी सुरक्षित और आसान हो गई है, और ये यात्रा करना बहुत रोमांचक हो जाता है। एक शानदार अनुभव हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है। नीला पानी, ताजी हवा और प्रकृति की विशालता का एहसास होता है हमें। बस थोड़ा सा मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ता है। तो चलिए हो जाते हैं तैयार और चलते हैं आज नौका विहार पर, है ना? तो आप हमारा इशारा समझ गए हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमने वही गीत चुने हैं जो नावों पर फिल्माए गए हैं, और इन गीतों में मुख्य रूप से रोमांस, आशा या अपने प्यार की तलाश जैसा भाव छुपा है। तो जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो अपने विचार लिख दिए हैं, और खुशी की बात यह है कि आज बहुत सारे गीत आपकी पसंद और हमारी पसंद के मेल खा रहे हैं। हाँ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार में शामिल होना चाहते हैं, वो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर अपनी बात हमें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नौका विहार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के सिवानी के गांव खेड़ा में नई अनाज मंडी में आयोजित हुए खादी रोजगार उत्सव में ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 972 कारीगरों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। साथ ही उन्होंने 3645 आधुनिक मशीनें एवं टूल किट भी प्रदान की।

0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर की 22,259 नई परियोजनाओं के लिए लगभग 504,68,00,000 रुपए की मार्जिन मनी व सब्सिडी का ऑनलाइन वितरण भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की बधाई भी दी। केंद्र सरकार के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे जनसंपर्क एवं जन जागरूकता अभियान के तहत कल सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा और जिला प्रशासन पलवल द्वारा जिला सचिवालय में सरकार की अंत्योदय उत्थान और जन कल्याण से संबंधित योजनाओं की विकास प्रदर्शनी एवं जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने किया। कार्यक्रम में उपायुक्त डॉ जयेंद्र सिंह छिल्लर, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, SDM भूपेंद्र सिंह, सूचना जनसंपर्क अधिकारी विजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा,
1: आज 12 साल नरेंद्र मोदी सरकार के रोड से लेके आसमान तक, स्वास्थ्य से लेके शिक्षा तक, शिक्षा से लेकर रेलवे तक, टेक्नोलॉजी से लेकर AI तक, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा, महिला, गरीब और किसान, उनके लिए किसान सम्मान निधि से लेकर युवाओं के स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया तक हर सपने को साकार करने के लिए बहुत सारे काम हुआ है, बहुत सारे अभी बाकी है। प्रधानमंत्री ने युवाओं के सामने 2047 विकसित भारत का संकल्प दिया है, उस पर काम करने का काम कर रहे हैं।
0: उन्होंने कहा कि सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा की ओर से लगाई गई विकास प्रदर्शनी में केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं, उपलब्धियों तथा नवाचारों को प्रदर्शित किया गया है। बादली के गांव मुनिमपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पुष्प उत्पादन क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रगतिशील किसानों को शॉल, प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से चयनित किसानों को पुष्प रत्न एवं पुष्प सम्मान पुरस्कार प्रदान कर उन्हें उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। विशेष रूप से पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में किसानों ने अपनी मेहनत, नवाचार और वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि फूलों की खेती किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में विविधीकरण को भी बढ़ाया व दे रही है। उन्होंने किसानों से आधुनिक तकनीकों को अपनाने और जैविक खेती, बागवानी एवं पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परिसर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित योगाभ्यास प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि ऋषि मुनियों की खोज योग भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में पहुंचाया है, जिससे भारत योग में विश्व गुरु बना है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CTT इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा मुक्त विद्यालय की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सितंबर अक्टूबर में ली जाएगी। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ एवं सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि सेकेंडरी ओपन परीक्षार्थी 1250 रुपये की शुल्क सहित तथा सीनियर सेकेंडरी ओपन परीक्षार्थी 1300 रुपये के शुल्क सहित 13 से 23 से 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: को स्वीकारना ही इस नैया को पार लगाने जैसा होता है। जब भी जीवन रूपी नाव डगमगाए तो जान लीजिए कि इस तूफानी यात्रा को शुरू तो पूरा करने के लिए एक योग्य मल्लाह या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये आज की इबारत थी, जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे द्वारा चुने गए गीतों से मेल खाता हो। आज हमने वो शब्द नहीं रखे ताकि आप श्रोता थोड़ा सा सरलता से गीत चुन सके, इसीलिए आप सबकी खातिर हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप में रचा। और एक शब्द नैया, जिस पर आज हमने कार्यक्रम केंद्रित किया, यानी कि सुरीला सफर हम आज इस नाव पर करने वाले हैं। जो गाने नावों पर फिल्माए गए हैं उसी पर आज हमने इस सुरीली यात्रा को रखा है। तो कैसी लगेगी आपको ये?

कहता तो ये कार्यक्रम के अंत में हमें पता लगेगा। इस बीच हम दो सवाल आपके लिए लाए हैं हमेशा की तरह। बहुत ही सीधे साधे सवाल है कि आप किसी नौका विहार पर कभी गए हैं? हमारे एक दो श्रोताओं ने लिखा भी है, तो आप भी बताइए कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या रहा नौका विहार का, वो वर्णन आप कर सकते हैं कम से कम शब्दों में। आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहनी है। और हाँ, नौका विहार पर फिल्मा गए गीतों में आपकी पसंद का कोई गीत जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वैसे तो आपने बहुत सारे गीतों को लिखा है, लेकिन आप जो बहुत गीत को पसंद करते हो और आपकी नजर में वो गीत बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ कि फिल्म कश्मीर की कली का गीत जो है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा तो वो गीत जो है मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि डल झील श्रीनगर की जो हसीन वादियों में शिकारा पर फिल्माया गया गीत है, और शिकारा की जो धीमी गति है और बैकग्राउंड में आपने देखा खूब सारे जो है कश्मीरी हाउस बोट्स रखे हुए हैं, और वो अपनी बारीक हस्तशिल्प कला से एक शानदार नायाब नमूने हैं। तो कितना सुंदर समा लगता है इस गीत को सुनने के बाद, देखने के बाद, और शम्मी कपूर साहब के तो कहने ही क्या, जब वो जिस एक झटकते अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई गीत पसंद होगा उसका जिक्र करें। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर, आवाजी लता मंगेशकर और साथियों की। ये फिल्म है सवेरा, गीतकार है शैलेंद्र और संगीत दिया है शैलेश ने।

अच्छा बताइएगा कि ये गीत फिल्माते समय आपको कौन से नायक और नायिका एक नाव पर बैठे दिखे, और साथ ही हमने आपको बताया था कि संगीतकार है शैलेश, ये संगीतकार कौन से हैं, इनका पूरा नाम क्या है, आपको ये भी बताना है।

तो ये था फिल्म सवेरा का गाना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शैलेश। इनका पूरा नाम आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये गीत यानी ये गीत जो फिल्माया गया है इसमें कौन नायक और नायिका एक नाव पर अलग से बैठे हैं और बाकी दूसरी नावों पर एक कोरस गान हो रहा है जो कि अभी आपने सुना था। हमारे श्रोता का कहना है कि जिंदगी तो एक नैया है जिस पर एक नाव को तूफानी दरिया में पार लगाने के लिए धैर्य संतुलन और सही दिशा की जरूरत होती है। वैसे ही जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए कुछ बातों का संतुलन रखना पड़ता है। जीवन में काम परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे नैया पानी के बहाव के साथ चलती है जिंदगी में उसी तरह दिशा रखनी पड़ती है और इन सबको संभालने के लिए धैर्य सहन शक्ति की जरूरत होती है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत जाए तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें क्योंकि सिर्फ खेवैया है जो पार तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन का ये सफर निश्चित रूप से कठिन है लेकिन चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और मजबूती मिलती है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता का लिखना है कि आज बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच के साथ गद्यांश को रखा गया है और सिर्फ एक शब्द नैया पर ही इसे सीमित कर एक बार फिर नई पहल की है। वैसे आपके नाम में भी नदी का रूप है। अरे वाह क्या बात है। आपको हमारे नाम का अर्थ पता है। आपने लिखा है कि जिंदगी के जल भ्रम में जब जीवन नैया फंस जाए तब जीवन में आए इस तूफानों से विचलित न हो और विश्वास साहस धैर्य सत्कर्म सकारात्मकता और सच्ची श्रद्धा की पतवार थामे तुम अपनी जीवन नैया को खेते जाओ। तब भगवान केवट बनकर इस भवसागर में जीवन नैया को जरूर पार लगाइए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रदत्त इबारत में संगीत में सुरीला सफर संजीवन भवसागर पार लगाने की महात्मय पर बखान है। सकारात्मक विचार को पतवार बनाकर जीवन नैया को खेते रहें। जीवन के ज्वार भाटा तूफानी थपेड़ों को सिर झुकाकर सामना कर जीवन नैया चलाते रहें। कभी भी ये सफर किसी भंवर में नहीं फंसेगा। सागर की तरह अपने आंतरिक तूफान को अपने तक हृदयंगम कर शांतचित रहना चाहिए। तूफान सामयिक होते हैं स्थायी नहीं। नवकल्पना नए रूप की सुरीली सफर स्मरणीय होगी और क्यों न हो स्वयं मंदाकिनी साक्षात संग चलेगी। क्या बात है क्या बात है। और हाँ हमारे श्रोता तो भाई बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कहते हैं। एक श्रोता लिख रही है कि आज तो बड़ी ही प्यारी इबारत के साथ आप आई हैं और हमें लग रहा है कि आज आप ही नाव में बैठकर आने वाली है। प्रोग्राम में अगर ऐसा है तो रास्ते में हमारा घर भी आएगा, हमें भी उसी नाव में बिठा ले रहा है। इस बार हम विविध भारती भी देख लेंगे और मुंबई शहर भी। हम इंतजार करेंगे, 1 बजे से पहले पहुंचना भी तो है। बिल्कुल सही कहा, हम नाव पर सवार ही हैं। आज हम सभी इस नाव पर और जीवन रूपी नैया पर तो हम वैसे ही भी सब सवार ही हैं, लेकिन हाँ इस कार्यक्रम में खास नौका विहार पर हम आज निकले हैं तो मजा लेते हैं इस नौका विहार का। और बताइए हमें कि भाई जो 2 गीत हमने आपको सुनवाए वो आपकी लिस्ट में शामिल थे कि नहीं। थे मुझे पता है क्योंकि मैंने देख लिया है। लेकिन जिन श्रोताओं की लिस्ट में वो गीत शामिल नहीं थे तो कोई बात नहीं, नौका विहार का तो हम आनंद ले ही रहे हैं, है ना।

लता मंगेशकर और साथी थे, फिल्म का नाम था चोरी चोरी। हमारे दो सवाल आपने नोट कर लिए होंगे कि आप कभी किसी नौका विहार पर गए, बताइए उसके बारे में, कब गए, कहां गए और कैसा रहा नौका विहार। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि नौका विहार पर फिल्माए गए गीत जो आज हम बजा रहे हैं या जो गीत फिल्माए गए हैं, वो आपको सबसे, जो आपकी पसंद का गीत है वो कौन सा है और क्यों पसंद है, उसकी फिल्मोग्राफी मतलब किस तरह से डायरेक्टर ने उस फिल्म को, उस गीत को फिल्माया है, उसके बारे में कम से कम शब्दों में बताइएगा। जैसे कि हमने आपको फिल्म कश्मीर की कली का उदाहरण दिया कि उसमें जिस तरह से गीत को फिल्माया गया है वो मुझे खासतौर से बेहद खूबसूरत लगता है।

हमारे एक श्रोता का कहना है कि जीवन रूपी नैया को पार तो सिर्फ एक खेवैया ही लगा सकता है और वो है हमारे प्रभु श्री राम, लेकिन ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। इसलिए इस जीवन रूपी नाव को बड़ी समझदारी और सच्चाई से खेते जाइए और फिर हम पार हो ही जाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने पापा की पोस्टिंग के कारण मेरा बचपन प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में बीता। प्रयागराज में यमुना जी के तट से संगम तक मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ कई बार नौका विहार का आनंद लिया, जो बेहद मनोरम लगता है। पिछले वर्ष दिसंबर में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर पति और बेटे के साथ मैंने नौका विहार किया। इससे पूर्व भी चित्रकूट में कई बार हम लोग नौका विहार का आनंद ले चुके हैं। मजे की बात तो ये है कि आज के कार्यक्रम को पेश करने वाली भी वही है जिनका नाम चित्रकूट में और एक क्या कहें आपकी तारीफ के लिए सर आंखों पर। और वही एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। हम अक्सर जीवन को एक सीधी लकीर मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक अनिश्चित समंदर है जहां भंवर जिन्हें हम चुनौतियां कह सकते हैं और मजेदार जो असमंजस का पर्याय है का आना तय है। ये विचार हमें सिखाता है कि जब जिंदगी की नाव डगमगाए तो घबराने की बजाय अपनी स्वीकार्यता की पतवार को थामें और ज्ञान के मल्लाह पर भरोसा रखें, नैया पार लगी जाएगी। चलिए तो नौका विहार पर जब हम निकले हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आवारा का गीत। क्या ये गीत आपकी लिस्ट में है? जरा खंगालिए। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की, शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

हमारे श्रोता का कहना है कि नाव वैसे तो समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की जीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन फिल्मकारों ने नाव पर बेहतरीन गाने फिल्माए हैं। पैकेजा का चलो दिलदार चलो, तो कश्मीर की गली का ये चांद सा रोशन चेहरा, और जिस गली में तेरा घर, चिंगारी कोई भड़के, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो सुनते सुनते कभी मन भरता ही नहीं है। आज नौकामय संगीत का सफर आनंदमय होगा ऐसा हम मानते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माँ जी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का कहना है कि इस कश्ती की भी अजब बात है, अक्सर दूसरों को पार करवा कर खुद पानी में ही रह जाती है, इंसान और नाव में बस इतना ही फर्क है। क्या खूब बात कही है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि नदी के किनारे घाट पर बैठकर चांदी से चमकती लहरों के बीच धीमे धीमे चलती नाव देखने का जो सुख है वो अवर्णनीय है। ये पल बिल्कुल ऐसा है जैसे दिन और ढलती शाम के बीच कोई मीठी सी बात हो जो सिर्फ शांत लहरों के बीच सुनी जा सकती है। नदी की लहरों पर नाव में बैठे हुए अपनी परछाई इस खूबसूरत पल को चुपचाप निहारती रहती है। सब कुछ सादा और प्यारा, पेड़ों की धुंधली सी दिखाई देती पंक्तियां, गीली घास की गंध अंधकार को चीरता हुआ नदी किनारे स्थित मंदिर का कलश, ये सब नदी के हृदय है। और चप्पू चलाता मांझी पानी के सुर से सुर मिलाकर पूरी कायनात को जैसे संगीत से भर देता है। बहुत सुंदर क्लासिक लिखी है आपने इबारत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रामायण में जब भगवान श्री राम जी केवट की नाव में जाते हैं तो पहले माता सीता जी को हाथ पकड़कर नाव में चढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी यात्रा हो धर्म पत्नी को आगे रखकर, उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की जो इबारत है आध्यात्मिक चौखट पर लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है, और इस भव सागर में विभिन्न प्रकार के भव जंजाल रूपी उर्मियों से ही हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार लगाने हेतु कुशल ही नहीं अपितु चतुर सेवक केवट जैसे मल्लाह की अपेक्षा की गई है। ये हर एक के हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार करते रहने का बहुत ही सरल उपाय है, किंतु उस दर तक भी कितने पहुंच पाते हैं, और वो भी जबकि हम केवल इतने शब्दों के बीच जीवन नैया पे ही उलझे रहेंगे, फिर मल्लाह के गुण और अवगुणों पर कैसे पहुंच पाएंगे। अरे भाई, इसके लिए हमें कुशल ही नहीं अपितु चतुर नाविक भी तो बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर इबारत लिख रहे हैं हमारे श्रोता, हमें तो पढ़कर बड़ा मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि नैया जब पानी पर उतरती है तो लहरों से समझौता नहीं करती, उनसे रिश्ता बना लेती है, शायद इसलिए वो हर मुश्किल सफर को आसान बना देती है। किनारे पर खड़ी नैया सुरक्षित जरूर रहती है, लेकिन उसकी

असली पहचान तो सफर से ही बनती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत तो सीधे तौर पर जीवन और अध्यात्म से जुड़ी है। जीवन की क्षणिकता, नश्वरता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने के साहस का प्रतीक है। मनुष्य जीवन एक कागज की नाव के समरूप है। मानव जीवन शरीर सांसारिक आशाओं का द्योतक है। जिस प्रकार कागज की बनी नाव का संसार रूपी सागर के अथाह पानी की अनंत गहराई में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर होता है। बहुत सुंदर, आपने आप सभी ने अपनी इबारत हमें लिख भेजी है। मन तो कर रहा है कि इन इबारतों को पढ़ते ही जाएं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा संगीत में भी होना पड़ेगा। तो आपके लिए लेकर आए हैं हम फिल्म उपहार का गाना, मुकेश और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। ये गाना भी आपकी लिस्ट में शामिल है, जरा खंगालिए है।

हमने आपसे सवाल किया था कि फिल्म सवेरा का जो गीत आपने सुना था ओ परदेसी, उसमें नायक और नायिका कौन बैठे दिखाई देते हैं नाव पर। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, हम तो ढूंढ रहे हैं। खैर, आपने जवाब दिया कि नहीं, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। मीना कुमारी और अशोक कुमार एक नाव पर अलग से बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है, जिनका नाम हमने शैलेश बताया था, पूरा नाम है शैलेश मुखर्जी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो हमें मिल जाएगा, तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे। और अब हमने जो सवाल हमारे श्रोताओं से किए थे, श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में मुकेश जी के गीत बहुत ज्यादा हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, गीत संगीत में ही खो गए हैं और इस गाने में ही नौकायन में हो गए हैं, माँ जी नैया ढूंढे किनारा, इस गीत से हमें बेहद मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, कोई ना कोई सबको लगता है प्यार, क्या कहना है इस गीत का। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नौका विहार तो बहुत बार किया है, पर पन्ना सफारी के दौरान कैन नदी में किया हुआ नौका विहार ताम्र याद रहेगा। साफ स्वच्छ पानी, नीचे तक स्पष्ट दिखाई देती रेत और पत्थर, साथ में चारों ओर घना जंगल, आह क्या ही खूबसूरत नजारा था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि केवट बड़ा चतुर और होशियार था, उसने प्रभु राम से कहा कि हम और आप दोनों एक ही हैं, मैं नाव से नदी पार करता हूं और आप भवसागर से पार करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चेन्नई, गोवा, थाईलैंड, इजिप्ट सभी समुद्र से घिरे हैं और सब जगह घूम के आई हूँ, क्या बात है, थोड़ा सा बताते कैसा लगा आपको वहां घूमना, तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी मन की आंखों से नौकायन कर लेते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद आता है और ये जो गीत आपने बजाया मांझी नैया, ये गीत बहुत ही प्यारा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी 14 गीतों की लिखी हुई इबारत में पहले नंबर पर लिखा हुआ गीत शामिल हुआ है, मांझी नैया ढूंढे किनारा, तो बधाई हो आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने हैं जो हमें पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिहार से हूं जहां नदियों पर पुलों की बहुत कमी थी, हमारे जमाने में गंगा नदी पर एक ही पुल था, इसलिए सभी गंगा पार नावों से ही करते थे, पर मुझे गंगा की वो शाम की याद आ रही है जब मैं और मेरा दोस्त नाव पर यूं ही सवार थे, सूर्य भगवान अस्ताचल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश में लालिमा छाई हुई थी और हम दोनों और मेरा नाविक बस इतने ही थे। तभी मेरे दोस्त ने गुनगुनाना शुरू किया, वो शाम कुछ अजीब थी, उस समय मैंने फिल्म खामोशी नहीं देखी थी लेकिन वो गाना मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात मैं आपको कहूं, हमारा अगला गाना भी यही है। हाँ चलिए थोड़े से और संदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा गीत आपको याद है ना मंदाकिनी जी, याद तो है, लेकिन वो गीत आज हमने शामिल किया है कि नहीं ये तो आपको अंत तक कार्यक्रम में सुनना पड़ेगा। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है, हम जब कश्मीर घूमने गए थे तब हाउस बोट में 3 दिन रहे और शिकारे पर बैठकर लेक की सैर की, वहीं चार चिनार नामक स्थल देखा, जहां भी घूमने जाती हूं वहां झील होगी तो नौका विहार जरूर करती हूं, केरल में पेरियार नदी में, नैनीताल के झीलों में, अरे वाह आप नैनीताल भी गई, महाबलेश्वर जैसी बहुत सी जगहों का आनंद मैंने लिया है, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं पहले आसाम में रहता था, तब एक नौका में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, उस समय डर भी लगा, सोच रहा था कि उस समय पता नहीं नौका कैसे पार लगेगी नदी पर, साथ में और भी व्यक्ति थे, हौसला बना रहा था, पर उस समय मेरे मन में एक सवाल उठा कि पानी तो बहुत ज्यादा है, इतना जैसे दुनिया में पानी ही पानी है, जमीन तो दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी तो शायद पूरी दुनिया को ही डुबो देता है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी जगह मैंने घूमा है, अभी 2-1 साल पहले ही भेंट द्वारका जाते समय नए समुद्री पुल के उद्घाटन से पहले स्टीमर से समुद्र पार कर बेट द्वारका गए थे और कन्याकुमारी में भी स्वामी

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वो शाम कुछ अजीब थी। एक गाना जो अभी आप सुना रहे हैं, वो शाम कुछ अजीब थी, मेरा सबसे पसंदीदा नौका विहार का गाना है, जहां प्यार की उत्कटता और विषाद को एक साथ दिखाया गया है और सिर्फ चेहरे के हाव भाव गीत के अनुपम शब्दों को सजीव कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया, फिल्म का शीर्षक गीत का सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नाव का दृश्य मन मोह लेता है। रहमान, धर्मेंद्र और नूतन की प्रभावशाली भूमिका वाली ये जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि परदेशियों से ना आंखें मिलाना वाला गीत मुझे बेहद पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 2000 के आसपास मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आते जाते और दूसरे दिन आपके हॉल के कार्यालय के पास के गोराई बीच से एसलवर्ड जाना हुआ था। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में अभी तक जितने भी गीत बजे हैं उनमें से तो एक भी हमारी लिस्ट में नहीं है। अरे, फिर आपकी लिस्ट में कौन से गाने थे? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मिलन का गीत मुझे बेहद पसंद है। सुनील दत्त और नूतन जो नाव में बैठकर गाने गाती हैं, वो गाना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोग जो गीत सुनवा रहे हैं वो बहुत ही बकवास गीत हैं। एक भी ऐसा गीत लोकप्रिय नहीं सुनवाया है जिसको सुनकर मन खुश हो। जब हमने विषय सुना था तब लगा था कि

से बढ़कर एक मनभावन गीत सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार चयन किया गया है। क्या कहें आपको, आपकी पसंद और हमारी पसंद शायद नहीं मिलती होगी, यही कह सकते हैं, है ना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही शानदार है और वास्तविकता से जुड़ी भी है। है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों तो रूपी तूफानों से न डगमगाई हो, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया उसका जो है उसकी डगमगाती नहीं है, सही हो गई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में कागज की नाव बनाते थे, अब नाती के लिए बनाकर फिर से बचपन को जी लेते हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीच में जो चिंगारी कोई भड़के वाली गीत की धुन सुनवा रही है उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो आज जो गीत आप सुनवा रही हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं और आप ही के नाम पर आधारित नदी पर बात हो रही है, लेकिन हम अगर 1986 की बात करें तो रेलवे सर्विस की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गया था। आने जाने का रेलवे पास रेलवे डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया था। परीक्षा देने के बाद भी वो पास 3 दिन तक मान्य था। इस दौरान मैंने कलकत्ता और हावड़ा शहर घूम लिया। इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में नाव की सवारी करने का मौका मिला, जो बहुत ही रोमांचित रहा। इसी तरह ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर में नाव की सवारी करने का मौका मिला। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी और कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास बहती हुई धाराओं में भी नैया में सफर करने का मौका मिला है और उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी गाने उन पुरानी यादों को ताजा कर देंगे। बिल्कुल ताजा तो कर ही रहे हैं, आपको लग ही रहा है कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं आपको अपने उन बीते दिनों की याद आ गई है ना। चलिए सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन की धुन। आपकी लिस्ट में एक गीत था ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि दो लफ्जों की है कहानी ये गाना और कहां ले चले हो मुसाफिर दुर्गेश नंदिनी का, ये दोनों गाने अभी तक नहीं बजे क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, दो लफ्जों की है कहानी तो हमने इसलिए नहीं बजाया कि हमने सोचा कि फिर आप श्रोता शिकायत करेंगे कि भाई कितनी बार तो ये गीत और सभाओं में बज गया है और आज फिर इस गाने को मंदाकिनी जी लेकर आ गई है, तो हमने उस गाने को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। हाँ, दुर्गेश नंदिनी का गाना तो शामिल नहीं हुआ, चलिए फिर किसी और कार्यक्रम में इस गाने को हम लेकर आएंगे, ठीक है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, दो जासूस का गीत पुरवैया लेके चलूं वाला, ये तो अब अगला गीत है आपकी पसंद का जो आप सुनने वाले हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से रोज नदी या समुद्र के किनारे दूसरे किनारे डेली अप एंड डाउन करते हैं, नौकायन से सफर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि लोग मुंबई में ट्रेन से सफर करते हैं, बसों से सफर करते हैं, ऐसे नौकायन लोग करते हैं, रोज नौका के द्वारा सफर होता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम कनाडा गए वहां गांव नाव में बैठे किसी जन्नत से कम नहीं लगा, हम उसे कैसे बयां करें समझ नहीं आ रहा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गाने आप सुनवा रही हैं हमें तो ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत कर तीव्र गति से कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। वही एक श्रोता कहते हैं कि आज वो शाम अजीब हो न हो लेकिन सुरीले सफर की दोपहर बड़ी ही सुंदर हो गई है नौका विहार करते हुए छोटी बहना के संग, क्या बात है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि सिर्फ मुझे ही फील हो रही है आज, हर गीत सुन कम रही हूँ फील ज्यादा कर रही हूँ, हूबहू नाव वाला दृश्य जहन में और जल तरंग की ध्वनि गूंज रही है जैसे तिलस्मी इबारत है ये, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना कश्ती का खामोश सफरिया आपने नहीं आज लिया, बिल्कुल नहीं लिया, अगली बार किसी कार्यक्रम में इसे जरूर शामिल करेंगे। वही श्रोता लिखते हैं कि मैंने कन्याकुमारी मथुरा थाईलैंड फुकेट दुबई यूएसए नायगरा फॉल पटना से गंगा जी और चंदोद में नर्मदा जी में सभी जगह नौका विहार किया है और मुझे सबसे अच्छा नायगरा फॉल बहुत ही पसंद आया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म नैया का गीत लेना था, तेरे आने से सज गई है टूटी फूटी नाव, बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे गीत हैं किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए समझ नहीं आता है, लेकिन आज हमने उन गीतों को याद किया, ये क्या कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार। अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर कार्यक्रम से, मंदाकिनी जोशी को दे दी इजाजत। फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को

0: भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
3: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू। शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। यह आवाज़ें लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ी, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है, इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने, स्वर है लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम दो दिल।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन की संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

0: सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार और आरती तुम्हें भी नमस्कार। हमारी बहुत सारी सखियां समय में सुन रही हैं।
1: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
0: अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की। एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
1: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका है।
0: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी।
1: हाँ।
0: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका।
0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा,
1: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे।
0: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे, और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो
1: क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी।
0: इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं। ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुन लें।
1: हाँ बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका, और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में, और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी, और अपनी माँ के साथ जो वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई तो गांव में जो मेले लगते थे, जो त्योहार होते थे, तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी, और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से, उस संगीत से, जो लोक संगीत था वहाँ का, उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज रच बस जाती है ना, तो जब आप उस चीज को गाते हैं तो बड़ी दिल से आवाज निकलती है।
1: बिल्कुल, और वो पूरा जो माहौल था ना, वो बचपन से उनको मिल गया था, और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते, जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है, तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की जो परंपरागत शैली है, यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई है वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही है। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि पांचवी कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी वो, पहली छात्रा,
1: मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है तो, और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गाँव से बहुत दूर था, और गाँव के स्कूल में पांचवी कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी, और यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के जमाने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में खासतौर पे ऐसा हुआ करता था, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया, और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ, और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी, और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहाँ उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की, और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना, तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी,
0: और वो श्रेणी की कलाकार
1: थी। देखिए मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया,
0: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं, और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजी बॉर्डरा, और फोन करना, ओ स्याली साली रुकमा, पारा भीरा जादियो, और देवारा जारे जू, और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को, जो तो आपने बताई भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
0: जी और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज्यादा होती है तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू है वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता हमारे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम का, ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम निकाल, कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज।
1: बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे।
0: हाँ।
1: तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके के फ्रॉड काफी होते हैं।
0: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे फोटो मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। और किसी भी तरह की चीजें हम खरीद सकते हैं ना। तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
1: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में से वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पे देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से पढ़ना
1: चाहिए
0: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल, एक मायूस होता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं। इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
0: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देखने देने के लिए कोई चीज दे रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं, नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं, तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
1: बिल्कुल, और अच्छा भी नहीं लगता है ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले। तो जरूरी है, हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर, वहां से खरीदें।
0: जो देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज़ होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है। सेल देख कर खरीद ली जाती हैं चीज़ें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देख कर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजा कर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध दालें सब्जियां ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो सोच समझ कर ही।
1: और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी है आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे उन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षा यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीजों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है, यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल। और चंचल देखो, एक अंतराल का समय हो गया
0: जी।

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारी श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें, और जैसा कि आपने बताया था कि पति है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेते हैं।
0: बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब भी आती हैं,
1: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं
0: जो
1: कभी पछतावा हो।
0: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूं तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको 2 बार पैसे खर्च करने पड़े।
1: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं, और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा, और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था, और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
0: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
1: और आज ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शबद कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी के जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है, और लंगर यानी कि जो भोजन लंगर होता है उसकी व्यवस्था की।
0: बिल्कुल, और लंगर का खाना चंचली इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं
1: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है। वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने पहले
1: गीत सुन लेते
0: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं।

0: जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर,
4: बहुत कुछ लिख डाला है भाई
3: जी।
4: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं। और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
3: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
4: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
3: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही होता
4: है, ये तो
3: है ना। तो हमारे जो पुरुष होता है कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
4: हूं। बिल्कुल बिल्कुल।
3: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
4: अच्छा।
3: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
4: जी। बिल्कुल।
3: चाय की एक बूंद भी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी टिप है,
4: बहुत जरूरी।
3: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं, अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वही पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते हैं। तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंद गिरी है तो वो ना हो,
4: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रही हूँ, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदी नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
3: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटे, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा ना करें। इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं, तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, इससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगो कर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
4: अरे वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, उन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ
3: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
4: बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
3: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें, बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या

0: पैदा ना हो जाए।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
0: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उस पर थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए, इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करें आगे। जी
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं है तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट ले और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन है उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
1: बिल्कुल।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का। तो आरती श्रीवास्तव को और चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: वंदन अभिनंदन। मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो न केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तरवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर जी का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका एंड

0: यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन.
1: जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं. हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा. लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है. आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप.
0: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ. मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे. मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे. और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में
1: जी.
0: वहाँ से भी एक एक एक वो है ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं. और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊँगा. और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी का. अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया.
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है. तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ और जब वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
0: देखिए, हालांकि हम फौजी परिवार से हैं लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए. तो ये बातचीत तो हुई थी लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को इंडिया भेजा. मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में इंडिया की तरफ गए और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई. शायद दो माएं रो रही थी लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उनको उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडी की तरफ.
1: वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है. एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है. जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुंच सकती है. इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना. अच्छा, ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने कहते हैं ना अपना प्यार कैसे बरसाया?
0: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआ, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलकुआ का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं. तो काफी जोश था उस टाइम पे, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का. और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था तो पूरे स्कूल में नाम हुआ. इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा तो काफी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देखे कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया. और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूं तो वो देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा बच्चा एक अफसर बन गया.
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है. जब आप ऑफिसर बने तब अलग तरीके से आपको लिया गया होगा कि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेस किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
0: देखो, जाना तो काफी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता. तो काफी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में, हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है. तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो इंडिया नहीं जा पाए वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं. वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए इंडिया या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो.
1: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला. ये बताइए, स्कूल में काफी शैतानियां क्या करते थे?
0: हाँ, यस, मैं मेरा एक बड़ा भाई है तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे. मैं काफी शरारती था, मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरा 12th ए वाला सुन रहा है तो काफी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग कर

0: रुकता था छोटी मोटी बातों के लिए, कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
1: अच्छा ये बताइए, शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए? आर्मी का तो काम ही यही आर्म्ड फोर्सेस का कि आपसे आपने इसे एक ऑफिसर बनाना है, लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार। तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
0: शैतानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू में जब एनडीए पहुंचे तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन, तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है। और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोर्समेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं, वो हम मिलाते हैं।
1: वाह क्या बात है, तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहां, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
0: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी गया, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की एकेडमी है। वहां से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी, और इमेजिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे, 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में हमने बहुत अच्छा काम किया, और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया। और आगे मेरा सफर 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं उसमें शुरू हुआ।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बन के पीछे मुड़कर देखा तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूँ शायद वो महसूस ना कर पाता अगर यहाँ ना होता?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोर्समेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोर्समेट्स हैं, IMA में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
1: वाह क्या बात है, अच्छी बात बताइए। और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
0: आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया। मैं
1: बच्चे के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
0: 2-3 दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
1: अच्छा,
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे, तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद 1-2 बार शायद रोने को भी हो गया हूं, रोया नहीं हूं, बट देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आए,
1: ले जा ले, ग्रिल लगा ले।
0: 5 महीने का टर्म होता है June to November, बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह क्या बात है, तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा
1: आपके साथ रहता है कहीं।

0: कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने में मदद करता है,
1: मदद करती है।
0: आप
1: मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की है, शी इज वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज गॉट टू डू विद माय मदर, क्योंकि वो हमेशा मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है। उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएं होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
0: जी, कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यहां मैं प्ले करना चाहूंगी।
1: तो माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई।
0: जी जी जी,
1: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है। हाँ। एंड वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
0: जी जी, जिसने सर जो मुद्दे उसमें उठाए
1: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं।
0: हाँ।
1: जो फाइटर पायलट बचे थे उनके।
0: जी।
1: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोस्टमेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
0: वाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात, और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तन्वर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज टू हैव कर्नल तन्वर here who has such kind of ये कहूंगी मैं सोच है, जिसके पास जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। किससे बात करने के बाद ना जाने, कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रही हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। खासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा, और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्जाम दिया मैंने एनडीए का, और बारहवीं के बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का ये जो सफर है, सफर नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा जैसा

0: कहा जाता है once an officer is always an officer. तो आज भी वो feeling, वो अनुभूति विद्यमान है, I'm still an officer. क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का posture है, I can well predict, yes, I'm talking to an officer. और कहीं ना कहीं आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी.
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरी, मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए. फौज में जो सिखाया गया वो बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं. वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज ही करने को बुलाते हैं. आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द इजियर रॉन्ग. और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद मान रखा है. और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी. हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा.
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत. वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो है लहू के बह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी. लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए. कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में. मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूं मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था. और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहां पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज्यादा करते हैं. उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन. और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती. खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी. फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीजें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे. हमने कुछ दिमाग लगाया और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती. और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना तब मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे कर तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया. क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई. तो उससे उससे मेरे को जिंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना.
0: क्या बात है, अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक जरूर पहुंचाया जाए, और आगे का कारवां आप ही की जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए. बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स.

0: संदेश सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? एक ऐसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 97 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून, दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे एक मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी। और आप उनके साथ कॉलेज में थे, आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास ला के खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास ला के खड़ा कर दिया। और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइस

0: एक्सिस दी वो रंग लाई, हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
1: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहां साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
0: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अफसर लेता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूं, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं, और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसमें, उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
1: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, एक व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है, हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना, कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है?
0: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं वो, क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता? पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये भय, डर, खौफ काफी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूं, चाहे जो भी हूं, उस कमांड को सक्सेस करना है। और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो चाहे मेरी जान जाए लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूंगा। और ये ऑफ कोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
1: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स, आई वुड से।
0: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस है, स्प्रिट कोर है, भारतीय सेना का जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजन लेने में मदद करता है।
1: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जिस कार में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को

0: होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूं, कॉरपोरेट में जैसी कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं ये अलग अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
0: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नय्यर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा, हमेशा पब्लिक। लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीजों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं। जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहां पे ब्रिगेडियर राणा है उदाहरण वर्ष, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण है कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशक्त हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रही हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नय्यर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से, और उन्हीं के नाम ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियां सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की है। आपके मिशन के बारे में बात की, आपके आपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए कर्नल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है, एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी, तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए, बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो, और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माई वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
2: सो स्वीट,
1: एंड तो पहली बार मैं काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अवसर था, यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
2: अच्छा।
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊंगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसल्ट करना पड़ा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, माई वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी, तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है, तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइव्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता, तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में, पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुम मैं जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया, एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
0: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन काफी कारगर साबित होती है, नित्य प्रति कार्य करती रहती है, तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रखती है, और

0: hats off to the wives of the army personals जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति अपने वीर soulmates के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है without any complaints
1: पर इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है बहुत institutional support मिलती है बहुत ज़्यादा जैसे मैं बताना था army schools होते हैं वहाँ पे army hospitals होते हैं सब कुछ अंदर होता है shopping complexes बहुत ही institutional support मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है
0: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे तो उनकी बातें कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी
1: बहुत याद आता है ऑफ कोर्स माय वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड बट शी इज आल्सो प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड
0: क्या बात है
1: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था मैं तेरी होगी यार सजना वे सजना और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए मेरे को अभी तक मेरी मेरी आंखों के सामने वो नजर आ जाता
0: क्या बात है यानी कि वो पल जिस
1: वो पल जिसमें सूत्र में बंधे
0: और उनका नृत्य कहीं ना कहीं आपको लुभा गया वाह क्या बात है कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है तकरार होती है और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज्यादा मजबूत है तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें

0: और हम भी हरदम हर पल बस आपके हैं और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और कर्नल तनवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूंगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 इयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स। अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। इंडिया में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ। मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं। मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को भी कहता हूं। मेरा बेटा भी हरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है। जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं ना कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है
0: जी।
1: मैं अपने नाम को कर्नल केवीएस तंवर वीएसएम लिख सकता हूँ, जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूंगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती थे जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
0: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं
1: आज के युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा
0: जी।
1: आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवती से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आए और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
0: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देशप्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी जिंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुंचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम जरूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तनवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद जरूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

शाम 5:05 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने युवाणी। इस कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30 का। इसमें भेंटवार्ता में आज का विषय रहेगा योग रखे निरोग। विशेषज्ञ हैं श्रीमती विभा शर्मा।

हिंदी में समाचार होंगे शाम 6:00। शाम 6:00 और 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी समाचार। प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:10 पर।

शाम 6:20 पर आप सुन सकते हैं गीता संदेश। इसमें आज आप सुनेंगे अध्याय 6 से श्लोक 23 से 26 की व्याख्या। व्याख्याकार होंगी डॉक्टर रेणु वत्स।

समाचार संध्या में रात्रि 8:45 पर आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार और अंग्रेजी समाचारों का समय रहेगा रात्रि 9:00।

रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा आपके लिए और 9:30 का समय रहेगा कार्यक्रम छाया गीत का। ये दोनों कार्यक्रम आप विविध भारती से सुन सकते हैं और रात्रि 10 बजे आप सुन सकते हैं आप सबकी फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें।

ये थी हमारे केंद्र से आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। और अब शाम के 5:05 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने। श्रोता साथियों, कार्यक्रम गाने नए पुराने लेकर मैं हाजिर हूं आप सभी की रेडियो दोस्त योग माया। सभी श्रोता साथियों को प्यार भरी नमस्कार। आइए साथियों कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस बेहद ही खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म हम नवा से। इस गीत को गाया है पापोन ने, फिल्म का नाम है हमारी अधूरी कहानी और संगीत है मिथुन का, गीत के बोल हैं सैयद कादरी के।

श्रोता साथियों, आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल्ली सिक्स से ये गीत। इस गीत को गाया है रेखा भारद्वाज, श्रद्धा पंडित और सुजाता मजुमदार ने। गीत के बोल लिखे हैं परसुन जोशी ने, संगीत है ए आर रहमान और रजत ढोलकिया का।

श्रोता साथियों, आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस। इस गीत का संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

इस अंतिम पेशकश के साथ ही कार्यक्रम गाने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो दोस्त योग माया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: युवाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी युवा साथियों को आपके दोस्त विशाल का प्यारा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय है योग रखे निरोग, जिसमें विशेषज्ञ के तौर पर श्रीमती विभा शर्मा आपसे संवाद करेंगी। प्रस्तुति देंगे डॉक्टर महेंद्र मोहन शर्मा जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक भेंट वार्ता, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
4: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
4: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
3: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
4: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
3: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
5: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
6: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
7: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने? बीज तो कब के बो दिए?
6: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
7: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
6: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
8: श्रोताओं नमस्कार, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि योग का क्या महत्व है और योग करने से हम कैसे निरोगी रह सकते हैं, साथ ही साथ युवा योग से कैसे लाभ ले सकते हैं, क्या फायदा युवाओं को योग करने से होता है। योग ना केवल हमारे शरीर बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है। तो इस विषय पे आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं विभा शर्मा जी, इनसे बातचीत करते हैं किस तरह से योग करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। विभा जी, आपका स्वागत है। तो बताइए, योग क्या है?
9: योग एक प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक अभ्यास है, जो मन और शरीर, आत्मा के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित करता है। एक व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से मिलने की प्रक्रिया योग है। विभिन्न ग्रंथों और आचार्यों ने योग को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। योग के प्रेरणता महर्षि पतंजलि के योग की सबसे सटीक परिभाषा दी है। योग चित्तवृत्ति निरोधा, अर्थात मन चित्त की वृत्तियों या विचारों के प्रवाह को रोकना ही योग है। उन्होंने मन को नियंत्रित करने के लिए अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का मार्ग बताया है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग के व्यवहारिक स्वरूप को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात अपनी पूरी सजगता, कुशलता और संतुलन के साथ कर्म करना ही योग है। इसके अलावा गीता में यह भी कहा गया है, समत्वम योग उच्चयते, दुख सुख हार जीत और लाभ हानि में समान रहना ही योग है। योग के उद्देश्य और मार्ग अलग अलग लोगों की प्रकृति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ज्ञान योग बुद्धि और विवेक के माध्यम से सत्य को जानने का मार्ग, भक्ति योग ईश्वर का या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग है, कर्म योग बिना फल की चिंता किए निस्वार्थ भाव से कर्तव्य निभाने को कर्म योग कहते हैं। राजयोग ध्यान समाधि और मन के नियंत्रण पर आधारित मार्ग होता है। पतंजलि का अष्टांग योग इसी में आता है। हठ योग मुख्य रूप से शारीरिक आसनों और प्राणायाम सांस के व्यायाम द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करने का मार्ग है। योग का वास्तविक उद्देश्य आधुनिक समय में योग केवल शारीरिक व्यायाम आसन मान लिया जाता है, लेकिन यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन शैली है जो व्यक्ति को मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति और आत्मबोध की ओर ले जाती है। इतिहास की बात करें तो वैदिक संहिताओं के अंतर्गत तपस्वियों तपस के बारे में प्राचीन काल से वेदों में उल्लेख मिलता है, जबकि तापसिक साधनाओं का समावेश प्राचीन वैदिक टिप्पणियों में प्राप्त होता है। कई मूर्तियां जो सामान्य योग या समाधि मुद्रा को प्रदर्शित करती हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थान पर प्राप्त होती हैं। हिंदू ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ जिनमें ध्यान तकनीकों का वर्णन प्राप्त होता है, वे ध्यान की प्रथाओं और अवस्थाओं का वर्णन करते हैं जो बुद्ध से पहले अस्तित्व में थी, साथ ही उन प्रथाओं का वर्णन करते हैं जो पहले बुद्ध धर्म के भीतर विकसित हुई। हिंदू वांग्मय में योग शब्द पहले कथा उपनिषद में प्रस्तुत हुआ, जहां ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण और मानसिक गतिविधियों के निवारण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, जो उच्च स्थिति प्रदान करने वाला माना गया है। पतंजलि के योग सूत्र भारतीय दर्शन में षड् दर्शनों में से एक का नाम योग है। योग दार्शनिक प्रणाली सांख्य स्कूल के साथ निकटता से संबंधित है। सांख्य घराने की तुलना में अधिक आस्तिक है। यह प्रमाण है क्योंकि सांख्य वास्तविकता के 25 तत्वों में ईश्वरीय सत्ता भी जोड़ी गई है। योग और सांख्य एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। प्राणायाम की पूरी प्रक्रिया में 7 प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। पहली प्रक्रिया भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरी प्रक्रिया कपालभाति, तीसरी बाह्य प्राणायाम, चौथी है अनुलोम विलोम, पांचवा है नाड़ी शोधन प्राणायाम, छठा है भ्रामरी और आखिरी प्रक्रिया है ओमकार जप। प्राणायाम का मुख्य रास्ता है नासिका यानी नाक। इन्हीं नासिका छिद्रों द्वारा आती जाती है श्वास। प्रश्वास ही जीवन है और प्राणायाम का आधार है। जब श्वास शरीर में आती है तो मात्र वायु या ऑक्सीजन ही नहीं आती, वरन एक अखंड दिव्य शक्ति और अंदर आती है जो शरीर में जीवन शक्ति को बनाए रखती है। यह जीवन शक्ति सभी ओर व्यास है, जिसे हम ईश्वर, भगवान, गॉड, खुदा आदि कुछ भी नाम दे सकते हैं। प्राणायाम से 72 करोड़, 72 लाख, 10,000, 210 नाड़ियां पूरी शुद्ध हो जाती हैं। इनके शुद्ध होने से शरीर पूरी तरह से स्वस्थ कांतिमय हो जाता है। मनुष्य में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये सभी प्राणायाम करने से चले जाते हैं। उदर रोग खत्म हो जाता है एवं पाचन तंत्र पूरी तरह से सुधर जाता है। मोटापा, कब्ज, गैस, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, एलर्जी, कोलेस्ट्रॉल, दमा, यौन रोग, किडनी एवं कैंसर जैसे रोगों में प्राणायाम बहुत उपयोगी है। मन शांत एवं स्थिर रहता है, चेहरे पर तेज ओज व प्रसन्नता रहती है, गुस्सा नहीं आता, मधुमेह जैसे रोग भी योग करने से ठीक हो रहे हैं। यहाँ तक कि वंशानुगत मधुमेह भी प्राणायाम करने से ठीक हो रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ दंभ को नष्ट करता है, नकारात्मक विचार खत्म होते हैं और सकारात्मक विचार आने लगते हैं। यदि आपने प्राणायाम की पूरी प्रक्रिया कर ली तो आप चक्रों के शोधन भेदन और जागरण द्वारा आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। कपालभाति करने से माथे पर आभा तेज एवं ओज बढ़ता है। इसे कम से कम 5 मिनट जरूर करना चाहिए। प्राणायाम शुद्ध सात्विक निर्मल स्थान पर ही करना चाहिए, अपवित्र स्थान में नहीं करना चाहिए। यदि घर के आसपास प्रदूषण है तो पहले घी या गूगल से उस स्थान को सुगंधित करें या फिर घी का दीपक जलाकर भी कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए सिद्धासन वज्र आसन या पद्म आसन में बैठना ठीक रहता है। योगासन की तरह प्राणायाम करने के लिए कम से कम 4 या 5 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। यदि सुबह योग कर रहे हैं तो नित्य क्रिया यानी शौचादि से निवृत्त होकर करना चाहिए। प्राणायाम शुरू में 5 से 10 मिनट करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे इसे आधे घंटे तक कर सकते हैं। प्राणायाम हमेशा नियमित समय पर करें, जल्दी व देर से ना करें। प्राणायाम करते समय मन शांत एवं प्रसन्न होना चाहिए, साथ ही एकाग्रचित होकर करना चाहिए। भोजन सात्विक ले एवं दूध घी फलों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ऐसा करने से मन शांत एवं एकाग्र रहता है।
8: विभा जी, युवाओं के लिए योग का क्या महत्व है?
9: युवाओं के लिए योग शारीरिक और मानसिक

0: करते हैं और अवसाद को कम करने में सहायक होते हैं। नियमित योग अभ्यास दिमाग की कार्य प्रणाली को तेज करता है। इसे छात्रों और युवाओं को अपनी पढ़ाई व कार्यस्थल पर फोकस करने में मदद मिलती है। योग शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, जिससे युवा दिन भर तरोताजा और सक्रिय महसूस करते हैं। युवावस्था में योग शुरू करने से शरीर लचीला और मजबूत बनता है। यह घंटों डेस्क पर बैठकर काम करने या पढ़ाई करने से होने वाले पीठ दर्द और कंधे के दर्द को रोकता है। कठिन आसनों का अभ्यास युवाओं में धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाता है। योग आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखता है और पाचन प्रक्रिया में सुधार करता है, जिससे संपूर्ण रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। योग भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करता है, जिससे स्वस्थ सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है।
1: विभा जी, बहुत अच्छा आपने बताया। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बताया कि योग और प्राणायाम करने से किस तरह से जो युवा हैं हमारे आगे बढ़ सकते हैं और खुद अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। इस सब जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
5: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
4: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
5: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
4: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
5: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
4: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
5: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
6: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
7: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
8: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
7: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
8: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
7: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।

0: तेज गर्मी के दौरान शरीर में पानी की कमी हो सकती है और इससे बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, नींबू पानी, छाछ और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। धूप में निकलते समय सिर को टोपी, गमछे या छाते से ढककर रखना चाहिए। बहुत अधिक धूप में लंबे समय तक रहने से बचना चाहिए। और अगर मौसम बदल जाए, आंधी और धूल भरे मौसम में सांस संबंधी समस्याएं और एलर्जी बढ़ सकती है। ऐसे समय में बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करना लाभकारी होगा। आंधी के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहना चाहिए। घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर धूल को अंदर आने से रोका जा सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए ताकि हम जल्दी से बीमार ना पड़े। ताजे फल, हरी सब्जियां और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। बासी और खुले में रखे भोजन से बचना चाहिए क्योंकि बदलते मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही नियमित व्यायाम, योग, पर्याप्त नींद भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। स्वच्छता का ध्यान रखें और हाथों को समय समय पर धोएं। यदि सर्दी, खांसी, बुखार या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बदलते मौसम में किस प्रकार रखें अपना ख्याल। आइए सुनते हैं युवानी कार्यक्रम में ये गीत। लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
4: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
4: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
3: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
4: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
3: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
5: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में।
3: तो दोस्तों, इसी गीत के साथ युवाणी कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने दोस्त विशाल को इजाजत। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी और प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
1: सिनकोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मिंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
3: रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi today held a series of high-level meetings with leading French business leaders in Paris as part of efforts to deepen India-France economic and industrial cooperation. Speaking to Akashvani after the meetings, top executives highlighted the growing opportunities in India and announced plans for deeper engagement with the country. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that discussions focusing on manufacturing, artificial intelligence, sustainability and maritime infrastructure.
1: SEMCOBA Chairman and CEO Benoît Bazin said India is emerging as a major manufacturing and export hub for the Asia-Pacific region. He highlighted the company's investment in low-carbon technologies and energy-efficient building solutions to support India's net zero goals. Mistral AI CEO Arthur Mensch said the company is keen to strengthen support for Indian languages, expand AI research partnerships and explore greater collaboration on sovereign AI. He also indicated plans to expand the company's presence in India. CMS CGM Chairman and CEO Rodolf Sade said India is rapidly developing as a hub for green shipbuilding. He welcomed company's decision to build 6 LNG-powered vessels in partnership with Indian shipyards and said discussions with the Prime Minister also covered logistics, ship recycling and deep sea port development. The meetings underscored growing economic and technology cooperation between India and France. This is Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
4: The Prime Minister also met CEO of Alstom, Martin Sean. In a social media post, the Ministry of External Affairs said that the discussions between them focused on opportunities in mobility and railway modernization. Prime Minister Narendra Modi is attending the Viva Tech 2026 alongside French President Emmanuel Macron this evening. He will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. We now go over live to listen to the Prime Minister's address.
2: For physical documents in India anymore, such as your driving license or vehicle registration certificate. Another example is the Gati Shakti platform. Thanks to technology, we have integrated more than 1,600 geographic data layers on a single GI-based map. We have created an integrated, data-driven, whole-of-government planning platform for infrastructure.
4: The Viva Tech Summit is Europe's largest technology and startup event, where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation ecosystem and technological advancements. The Prime Minister is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. Education Ministry today said that 52 Indian institutions are featured in the QS World University Rankings 2027. IIT Delhi remains India's highest ranked institution at 118th globally, while IIT Delhi, IIT Bombay and IIT Madras are among

ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों का आकलन किया। अधिकारियों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से परीक्षा कराने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। हरियाणा में निर्माण श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया। आज श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर गुरुद्वारों में दीवान सजाए गए। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में गुरु साहब की शिक्षाएं सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक रुपये आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजना का प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में सुरक्षा उपायों, प्रबंधों और शिकायत निवारण तंत्रों की भी समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। इसके साथ ही उन श्रमिकों की सदस्यता नवीनीकरण प्रक्रिया भी पुनः शुरू कर दी गई है, जो सत्यापन एवं जांच प्रक्रिया के दौरान पात्र पाए गए थे। श्री विज ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे तथा व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। इसी दृष्टिकोण से पूर्व में प्राप्त शिकायतों एवं अनियमितताओं की जांच के बाद अब संशोधित एवं अधिक मजबूत व्यवस्था के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पुनः आरंभ की गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आज श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर पंजाब, हरियाणा

0: और चंडीगढ़ के गुरुद्वारों में दीवान सजाए गए और रागी जत्थों ने कीर्तन से संगतों को निहाल किया। गुरुद्वारों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ के भोग भी डाले गए। अम्बाला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बादशाही बाग और गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब में संगत ने बड़ी संख्या में पहुंचकर गुरु साहब को नमन किया और उनके दर्शाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अम्बाला शहर के विभिन्न चौकों, बाजारों और प्रमुख मार्गों पर मीठे जल की छबीलें लगाई गईं। कई स्थानों पर गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। भिवानी के घंटाघर गुरुद्वारा सिंह सभा में भी शहीदों के सरताज पांचवें गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी गुरपर्व पर गुरबाणी कीर्तन एवं सुखमनी साहब के पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मीठे पानी की छबील व लंगर की सेवा भी की गई। आज श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छबील सेवा भी की। मुख्यमंत्री ने देश व धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी के 420वें बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास त्याग, तपस्या, बलिदान और आध्यात्मिक पराक्रम की एक अनवरत यात्रा है। आज विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में गुरु साहब की शिक्षाएं देश का मार्गदर्शन कर रही है।
1: प्यारी साध संगत जीओ, अज जदों असी देश दे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दे सक्षम नेतृत्व हेठ एक नवे भारत दे निर्माण कर रहे हैं, असी देश नूं विकसित भारत बनाने दे संकल्प नाल अगे वध रहे हैं, तां गुरु अर्जन देव जी दीआं सिक्ख्यावां साडा वड्डा संबल बन करके सानू हौसला दे रही हैं। हरियाणा दी इह वीर धरती सदियां तां गुरुआं ते पूर्मियां दी धरती रही है। इत्थे दी मिट्टी विच गीता दा ज्ञान वी है अते साडे गुरुआं दे बलिदान की खुशबू भी है। साड़ी सरकार गुरुआं दे दिखाए हुए मार्ग ते चलन वास्ते पूरी तरह प्रतिबंध है।
0: उन्होंने कहा कि आज पूरा देश गुरु साहिबान को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुरुओं की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
1: भावें गुरु तेग बहादुर जी दा प्रकाश पर्व मनाण दी गल होवे, चाहे वीर बाल दिवस ए साथियो साहिबजादां दी शहादत नूं घर घर पहुंचाउण दी गल होवे, चाहे करतारपुर साहिब कोरिडोर दा निर्माण दी दशकां पुरानी मांग नूं पूरी करन होवे, सारे प्रयास इस गल दे प्रतीक ने कि अपने गुरुआं दा ऋण कदे नहीं भुला सकदे हां। असीं प्यारी साध संगत जीओ, पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी तों लै के 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, सारे गुरुआं ने सम्मानता, सेवा, करुणा ते भाईचारे अते सामाजिक न्याय दा संदेश सानू दिता है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में बच्चों को स्कूल से ही सिख इतिहास को जानने का मौका मिलेगा।
1: हुण असी हरियाणा विच 8वीं क्लास दे इतिहास पाठ्यक्रम विच सिख गुरुआं दा इतिहास शामिल कर दिता है। साथियों, मेरे लिए बड़े फखर दी गल है कि अज साडे स्कूली बच्चे सिख गुरुआं दे नाल नाल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दे त्याग, बलिदान अते आदर्शां दे बारे भी पढ़न दा उनां नूं मौका मिलेगा, उनां नूं इतिहास नूं नजदीक ते जानन दा मौका मिलेगा।
0: उन्होंने कहा कि पंचकूला में 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने हाथों से दंगा पीड़ित परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे। हरियाणा सरकार मानव सेवा और पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के उत्थान को अपना परम धर्म मानती है। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर एक मजबूत और अखंड समाज का निर्माण करने में सहयोग करना होगा। कार्यक्रम के दौरान श्री गुरु अर्जन देव जी के जीवन पर एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। केंद्र सरकार गौरवमयी 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज जींद के हमेटी परिसर में किसान यात्रा एवं पशुधन सर्वधन सम्मेलन का आयोजन किया गया। जागरूकता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह ढुल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर गिरीश नागपाल सहित जिले भर के अनेक प्रगतिशील किसान व विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री तेजेंद्र सिंह ढुल ने कहा कि आज की इस बहुआयामी कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और निरंतर कम हो रहे पशुधन को पुनर्जीवित करना था। कृषि वैज्ञानिकों ने सम्मेलन में किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने, प्राकृतिक उपचार के माध्यम से बीजों को शोधित करने तथा जैविक कीटनाशक तैयार करने की विधियों सहित बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। ड्रोन दीदी जैसे सफल योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को बीज, उपकरण और खाद्य सामग्री में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर गिरीश नाग

0: पाल ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न प्रगतिशील किसान संगठनों और सामुदायिक मार्गदर्शकों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता लाने के लिए तैयार किया जाता है।
1: आज के इसे के जागरूकता सम्मेलन में पूरे जिला से अलग अलग सब डिवीजन से किसान आए हैं, FPO के माध्यम से और दूसरे CRP हमारे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को विभाग द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। वो आगे किसानों को तैयार करते हैं कि किस तरह से प्राकृतिक खेती की तरफ वो अपनी खेती को मोड़ सकते हैं और दूसरे किसानों को प्रेरित कर सकते हैं।
0: कार्यशाला में किसानों द्वारा तैयार प्राकृतिक उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी भी लगाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनः परीक्षा की तैयारियों का आकलन किया। अधिकारियों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से परीक्षा कराने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। हरियाणा में निर्माण श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया। आज श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर गुरुद्वारों में दीवान सजाए गए। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गीता संदेश। इसमें आज आप सुनेंगे अध्याय 6 से श्लोक 23 से 26 की व्याख्या। व्याख्याकार हैं डॉक्टर रेणु वत्स।
3: श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के श्लोक संख्या 23 से आगे की व्याख्या। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोगों से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। भौतिक संसार माया का क्षेत्र है, इसे श्री कृष्ण ने दुख लयम आशास्वतम अर्थात अल्प और दुख से भरा हुआ ऐसा कहा है। इस प्रकार माया की तुलना भौतिक ऊर्जा से की जा रही है। हमें अज्ञानता के अंधेरे में ऐसा डाला गया है, हमें दुनिया में असुविधाओं में पहुंचाया जा रहा है। जब हम ईश्वर का प्रकाश अपने हृदय में प्रवाहित करते हैं तो माया का अलौकिक रूप सामने आता है। भगवान प्रकाश की तरह है और माया अंधकार की तरह है। जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश को घेरने की शक्ति नहीं है, उसी प्रकार माया से ईश्वर को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता है। भगवान का स्वभाव दिव्य आनंद है, जबकि माया का परिणाम दुख है। इस प्रकार जो भगवान के दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी माया के दुखों से दुखी नहीं होता है। इस प्रकार योग की स्थिति का अर्थ है आनंद की प्राप्ति और दुख से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण दोनों पर बल देते हैं। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा है श्री कृष्ण भगवान ने कि योग के परिणामों के रूप में आनंद की प्राप्ति है। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि योग में दुखों से मुक्ति का बल है। योग के द्वारा हम दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दृढ़ अभ्यास के माध्यम से पूर्णता की स्थिति चलायमान हो जाती है। फिर श्री कृष्ण जी ने इसमें कहा है कि हमें ध्यान का अभ्यास कैसे करना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैव इन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोक कर शनै शनैर उपरमेत बुद्ध्या धृतिर गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। क्रम क्रम से भलीभांति अपने मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे, ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ध्यान के लिए मन को दुनिया से निरपेक्ष ईश्वर पर अर्थात मुझ में ध्यान देने की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन को दुनिया से दूर ले जाना ही ध्यान है। जब मन दुनिया से दूर होता है तब मन में धार्मिक ग्रंथ, लोक, इतिहास आदि के विचार आते हैं। प्रारंभ में भावनाओं और विचारों के रूप में होते हैं। जब हम स्फूर्ति के उपाय पर जोर देते हैं तब संकल्प और विकल्प सीधे तौर पर ईश्वर प्रवृत्ति होती है। जो व्यक्ति ध्यान में सफलता चाहता है उसे भौतिक शास्त्र के प्रति आस्तिकता का त्याग कर देना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया का पहला भाग तो है मन को दुनिया से परे हटाना, और फिर उसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं दूसरे भाग में कि मन को भगवान में लगाना, मन को ईश्वर के प्रति भक्ति में लगाना। उनका कहना है कि एक बार में ही भक्ति में मन नहीं लगता, योगश चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों पर जब निरोध करना शुरू करेंगे, अपनी मन को वश में करना शुरू करेंगे, तब धीरे धीरे दृढ़ प्रयास से हमें सफलता मिल जाएगी और हम ईश्वर की भक्ति में मन को लगा पाएंगे। शास्त्र सम्मत संकल्प को धृति कहते हैं। यह निश्चय ही बुद्धि के दृढ़ विश्वास से आता है। बहुत से लोग स्वयं को प्रकृति और निरर्थकता के बारे में शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके दैनिक जीवन में उनका ज्ञान अलग अलग होता है और उन्हें पाप और नशे की लत में देखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बुद्धि उस ज्ञान का प्रतिरूपण नहीं करती। विवेक की शक्ति संसार की नश्वरता और ईश्वर के साथ व्यक्ति की शाश्वतता के बारे में बुद्धि के दृढ़ विश्वास से आती है। इस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे उन भोग और विलास को बंद करके ईश्वर की शरण में आ जाता है, मन और इंद्रियों के विषयों से परे होकर ईश्वर की भक्ति में मन को लगा लेता है। यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियमयि तदात्मन्येव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे, अर्थात परमात्मा में ही लगाए, बार बार उस विषय से हटाकर। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान में सफलता एक ही दिन में नहीं बार बार अभ्यास से आती है। हमें बार बार योग का अभ्यास करना पड़ेगा। जब हम अपने मन को लक्ष्य करके भगवान में संकल्प करके भगवान का ध्यान लगाते हैं तो ध्यान की प्रक्रिया में तीन चरणों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। बुद्धि की विवेक शक्ति से हम निर्णय लेते हैं कि संसार में हमारे मन को लिप्त नहीं करना है, संसार से मन को परे हटाकर ईश्वर की शरण में जाना है। दूसरा है विवेक की शक्ति से हम समझते हैं कि ईश्वर ही हमारा है, ईश्वर प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, तो हमारे मन को भगवान की भक्ति में ध्यान केंद्रित करने के लिए हम अपने मन को लाते हैं, इसके लिए भी प्रयास आवश्यक है। फिर मन ईश्वर से अगर दूर हो जाता है, संसार में भटक जाता है, फिर प्रयास की आवश्यकता होती है, उसे फिर से योग के द्वारा हम ईश्वर की शरण में लेकर आते हैं। तीसरा चरण हमारे सामने आता है कि बार बार हम निराश हो जाते हैं कि हमारा मन नहीं लग पाता है भक्ति में, भगवान पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं फिर वापस दुनियादारी में लग जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें निराश नहीं होना है, अपने चंचल मन को फिर से अपनी इंद्रियों को निरोध करके, अपनी इंद्रियों को संसार से परे हटाकर, मोह से दूर हटकर फिर से भगवान की भक्ति में लेकर जाना है। मन को दुनिया से दूर हटाना और वापस भगवान के भक्ति में लेकर आना, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के श्लोक संख्या 26 तक श्लोकों की व्याख्या सुनी।
4: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश। इसमें आज आपने सुना अध्याय 6 से श्लोक 23 से 26 की व्याख्या। व्याख्याकार थे डॉक्टर रेणु वत्स। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइया ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पौध रोपण की वैज्ञानिक विधि पर, और साथ ही भाइयों लेंगे जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त पर, और साथ में करेंगे भाइयों चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत खेत बचाओ अभियान पर, और लेवेंगे जानकारी प्राकृतिक खेती में बीजामृत बढ़ाने की विधि और इसके उपयोग पर। इसके अलावा करवाऊंगे भैया का मनोरंजन, और जो दूसरे सामसायिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो भाइयों शुरुआत करें चर्चा से पौधरोपण की वैज्ञानिक विधि पर। किसान भाइयों, पर्यावरण को प्रदूषण बचान खातर हमारी धरती के कम से कम 33% हिस्से पर जो है वन या जंगल होने जरूरी है, लेकिन अपने भारतवर्ष में तो भाइयों सिर्फ 22.5% क्षेत्र में ही वन है, और ये भी बड़ी तेजी से घटन लग रहा है। और अपने हरियाणा प्रदेश में तो भाइयों जो वन का क्षेत्र है वो केवल 9% रह गया। ऐसे में जो हमारे किसान भाई हैं, क्योंकि वो तो सबका पेट तो भरे हैं, लेकिन उनका एक दायित्व तो और बढ़ जाए कि हमारे जो किसान भाई हैं वो भी अपने खेतों में जो है कृषि वानिकी पद्धति के तहत जो वृक्ष हैं वो लगाकर देश और प्रदेश का जो वन क्षेत्र है उसने बढ़ाने में मदद करें। और किसान भाई जो है अपने खेत में अलग अलग तरह के वृक्ष लगा सकते हैं, जिस तरह पॉपुलर हो गया सफेदा है, नीम है, शीशम है, बकैन है, इत्यादि कई तरह के पौधे हैं या पेड़ हैं जो किसान भाई लगा सके हैं। और साथ ही साथ भाइयों जो पर्यावरण का प्रदूषण है उसने कम करने के साथ साथ अपनी आमदनी में भी जो है इजाफा कर सके हैं। खास तौर पर खेत में लगाया गया जो हर एक पेड़ है वो किसान भाई की बैंक में जमा पूंजी की तरह काम करे हैं। जिस किसान भाई ने 8-10 साल बाद किसी भी समय अपने खेत रूपी जो बैंक है उससे निकाल कर उन्हें बेच कर मुनाफा किसान भाई कमा सके हैं। पॉपुलर न छोड़कर भाइयों बाकी सारे के सारे जो वृक्ष हैं वो जुलाई और अगस्त के महीने में, यानी कि जो मानसून की जो पहली बारिश है उसके बाद लगा सके हैं। और अक्सर देखा भी गया है कि किसान भाई जो अपने खेतों में पेड़ तो लगाते हैं लेकिन उनकी देखभाल का ना ध्यान नहीं रख पाते, जिसके कारण या तो वृक्षारोपण के थोड़े समय के बाद जो पौधा है वो मर जाए या उसकी बढ़वार जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाती। और इस तरह भाइयों जो वृक्ष लगाने में कई सारी जो मेहनत हमने करी है वो सारी की सारी बेकार चली जाए। तो वृक्षारोपण सफल बनाने खातर और वृक्षों तक अधिक से अधिक लाभ कमाने खातर किसान भाई जो है अगर वैज्ञानिक तकनीकी तक वृक्षारोपण करेंगे तो उससे जो है वो ज्यादा लाभ कमा पाएंगे। और इसमें हमने किन बातों का ध्यान रखना है, एक तो अपनी जमीन की जो प्रकृति है उसके अनुसार ही पेड़ का चुनाव करें। अगर जमीन थोड़ी सी खराब है और तो उसमें हम पापड़ी है, सफेदा है या बकैन है, बबूल है, इस तरह के पेड़ लगाओ तो बढ़िया रहेगा। और अगर जमीन और पानी दोनों बढ़िया है तो किसान भाई जो है अपने खेत में जो खेती वाली जो फसल है उसके साथ साथ कृषि वानिकी की जो अलग अलग पत्ती है उसके तहत पॉपुलर और सफेदा लगा कर भी अपनी आमदनी ने बढ़ा सके है। साथ ही बात करें भाइयों पौधे लगाने के समय की, तो जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई का सही और बढ़िया साधन है तो वो अपनी और पानी भी जो है अच्छी गुणवत्ता वाला है तो वो अप्रैल मई और जून के महीने न छोड़कर किसी भी महीने में वृक्षारोपण कर सके हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त में यानी कि पहली बारिश जब हो जाए उसके बाद लगाए गए पौधे जो है वो उनमें बढ़वार ज़्यादा देखी जावे है। और पॉपुलर केवल भाइयों जनवरी और फरवरी के महीने में लगावा तो बढ़िया रहेगा, और दूसरे जो पौधे हैं उन पौधों की उपलब्धता और उसकी सिंचाई के आधार पर ही है उनके साधन पर भी उसका असर पड़ा है। और जो गड्ढे हैं वो पौधरोपण करने तक लगभग एक तो दो महीने पहले यानी कि मई और जून के महीने तक उन्हें तैयार कर लें और मिट्टी गोबर इत्यादि का जो मिश्रण है उसमें भर दें ताकि पौधरोपण के समय जो है ज़्यादा कठिनाई का हमने सामना ना करना पड़े। इसके अलावा भाइयों पौधरोपण के तरीके की बात करें तो लगाया गया जो पौधा है वो जिंदा रहे, उसकी बढ़वार जो है भरपूर होती रहे, तो उसके लिए भाइयों हमने जो है वैज्ञानिक तकनीक तय पौधरोपण करना जरूर चाहिए। और पौधरोपण करने के लिए भाइयों हमने गड्ढे जो है वो मई जून के महीने में तैयार कर लेने हैं और मिट्टी गोबर की जो गली सड़ी खाद है और जो रेत है इसका एक अनुपात एक में हमने मिलाकर गड्ढे भरने हैं। जैसे ही जुलाई महीने की पहली बारिश हो उसके तुरंत बाद पौधरोपण कर दें ताकि मानसून के दौरान जो है पूरी बारिश का लाभ उठाकर पौधा अपने आप ने जो है मजबूत कर ले। और पौधे को भाई वो जमीन में जो लगाने था पहला पॉलिथीन की जो थैली है जिसमें पौधा लगे हुआ है उससे सावधानीपूर्वक पहला हटा लें। और थैली हटाते समय भाइयों इस बात का ध्यान रखें कि जो जड़ों के चारों तरफ की जो मिट्टी है वह ना हिले, और अगर जमीन क्षारीय है तो उसमें भाइयों गिरमिट प्रणाली या बर्मे की द्वारा जो है पौधे लगावें और उर्वरक इत्यादि का प्रयोग भी जरूर करें। और पौधरोपण करते समय दोनों पैरों तक पौधे के चारों तरफ की मिट्टी ने अच्छी तरह दबा लें। इसके तुरंत बाद भाइयों 20 से 25 लीटर पानी तक सिंचाई जरूर करें ताकि जड़ों के आसपास जो है हवायुक्त जो स्थान है वो ना रहे। इसके अलावा भाइयों हमने दीमक से भी बचाव करना है। जिन क्षेत्र में दीमक का प्रकोप ज़्यादा है वहाँ पर पौधों को दीमक से बचाने खातर क्लोरीपाइरीफास नामक दवा का प्रयोग करें। और क्लोरीपाइरीफास भाइयों प्रतिरोधी प्रतिपौधा जो है वो 50 मिलीलीटर हमने 20 से 25 लीटर पानी में मिलाकर इसका इस्तेमाल करना है और अकेले क्लोरोपाइरीफास या जो अन्य दीमक रोधी दवा है उसका इस्तेमाल कर देना करें भाइयों। तो ये तो ली भाई जानकारी कि पौधरोपण की वैज्ञानिक विधि कौन कौन सी है। और इबले में भाइयों जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की। किसान भाइयों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि DBT योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य भाइयों देश भर के जो भूमिधारक किसान भाई हैं किसान परिवार हैं उन आर्थिक मदद और उनकी सहायता करना है ताकि वे अपनी जो कृषि और जो घरेलू जरूरत है उन्हें वो पूरा कर सकें। साथ ही साथ भाइयों बात करें इसकी जो वित्तीय सहायता है तो जो पात्र किसान भाई हैं उन्हें हर साल 6,000 की आर्थिक सहायता इस स्कीम के माध्यम से दी जावे है और किस्त जो है यह राशि जो है चार महीने के अंतराल पर 2,000 की तीन समान किस्तों से जो है सीधे बैंक के खाते में किसान भाई के भेजी जावे है। और यह योजना भाइयों मूल रूप से देश के सभी छोटे और जो सीमांत किसान भाई हैं उनके परिवार खातिर है जिसके पास खेती योग्य जमीन है। और यह जो योजना है इस योजना के माध्यम से किसानों को न्यूनतम आय सहायता दी जावे है जिससे कि किसान भाई जो है साहूकार के कर्ज से बचा रहे हैं और जो अपने घर के खर्च है या जो खेती बाड़ी में जो खर्च हो है उस खातर उसने पैसा मिल जाए। साथ ही यह जो योजना है एक पारदर्शी योजना है क्योंकि इसमें बिचौलियों को खत्म करने के लिए पैसा सीधा जो है किसान भाई के बैंक खाते में ट्रांसफर कराया जावे है जिससे जो बिचौलिए हैं वो इसका लाभ नहीं उठा पाते। साथ ही साथ भाइयों खाद बीज की सुविधा की बात करें तो खेती के समय जो है सही बीज और खाद के जो खर्च हैं वो किसान भाई उठा सके या योजना उसमें मदद करे है। बात करें भाइयों पात्रता की तो योजना तो भाइयों देश के जो अधिकांश किसान परिवार हैं वो इसमें जुड़े हैं शामिल हुए हैं लेकिन कुछ एक श्रेणी है जो इस बाहर रखी गई है खासतौर पर जो एक तो स्थान संस्थागत जो किसान है वो या जो वर्तमान या पूर्व में कोई संवैधानिक पद पर या किसी नौकरी में रहने वाला व्यक्ति है वो साथ ही सभी तरह की जो सेवारत या सेनावृत जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं चाहे वो केंद्र सरकार के हैं राज्य सरकार के हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते। इसके अलावा भाइयों जो पेशेवर और जो पेंशन भोगी हैं और जो आयकर दे रहे हैं वो भी किसान इससे बाहर होंगे। बात करें भाइयों आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज की तो यह योजना जो है जो किसान भाई इसका लाभ लेना चाहे हैं तो जो है वो ऑनलाइन या अपने जो नज़दीकी कृषि कार्यालय है या जन सेवा केंद्र है उसके माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं और इसके लिए भाइयों जो आवश्यक दस्तावेज है वो है आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या और भू जो स्वामित्व है उसके दस्तावेज यानी कि जो खेत या जमीन का विवरण है वो जरूर होना चाहिए। साथ ही भाइयों पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जो है हमने इसमें चाहिएगा। और ई केवाईसी जो है योजना का लाभ लगातार प्राप्त करने खातर जो लाभार्थी है उनका ई केवाईसी पूरा होना जरूरी है, जिससे आपके पास जो ओटीपी है उसके आधारित जो प्रक्रिया द्वारा घर बैठे ही पूरा करा जा सके है। और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 23वीं किस्त है भाइयों वो 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल के हुगली तारकेश्वर में 9 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 2000 रुपए की जो राशि है वो ट्रांसफर करेंगे। तो ये तो ली भाइयों जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त पे। और इवले भाई जानकारी कल के कृषि कार्यक्रम के विषय पे। तो किसान भाइयों कल है दिन शुक्रवार और कल अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बागों में फल गिरने की समस्या और उसके समाधान पे। और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे गोबर की खाद जमीन की उपजाऊ शक्ति ने किस तरह सुधारें और जानकारी लेंगे भाइयों बैंगन फसल की देखभाल पे। और इब करवाऊं भाइयों का मनोरंजन, सुने रागणी।
6: भगति कर ले दिल ने भगत।

0: ये तो सुनी भैया नरागणी और गायक कलाकार थे रामनिवास शर्मा।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: अन्नदाता का बढ़ता किसान।
0: और भाइयों, खेती बाड़ी में मौसम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और खेती बाड़ी जो है निर्भर मौसम पर कर है, और मौसम की जानकारी लेकर आए हैं भाई मंजीत।
3: तो आज का मौसम अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और कल का न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस, और कल का संभावित तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 29 डिग्री सेल्सियस कम, ये कल का तापमान रहेगा।
0: तो मंजीत भाई ने जो है मौसम की जानकारी दी कि आज का जो अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस, और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 38 और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 29 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ प्रदेश के कुछ एक इलाके में भाइयों छिटपुट बूंदाबांदी भी हो सके है। और इब ले भाइयों जानकारी खेत बचाओ अभियान पे। किसान भाइयों, देश की खेती किसानी ने जो है एक नया मोड़ देने खातर केंद्र सरकार जो है इस साल 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में जो है खेत बचाओ अभियान चला रही है, और इस राष्ट्रव्यापी मुहिम की जो शुरुआत वो खुद जो है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से करी। और लगातार बढ़ते जो है केमिकल और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है उसकी सेहत लगातार खराब होने लग रही है, और इसी संकट को भांपते हुए जो है सरकार ने इस महीने गांव-गांव और पंचायत स्तर पर जाकर मिट्टी को बचाने का एक बीड़ा उठाया है। साथ ही यह अभियान जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को शामिल किया जाने लग रहा है, ताकि किसान भाई जो है इसमें बड़े स्तर पर जो है लाभ उठा सके। और इस अभियान का भाइयों सबसे बड़ा और मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की घटती

उपजाऊ शक्ति को बचाना और खेत में लगने वाली जो भारी भरगम लागत है उसने कम करना। और आज के समय में भाइयों ज्यादा पैदावार के चक्कर में खेती में जो यूरिया और जो दूसरे रासायनिक खाद हैं उनका इस्तेमाल जरूरत ज्यादा होने लग रहा है, जिससे जमीन के अंदर की जो मौजूद फायदेमंद मित्र कीट है और जो बैक्टीरिया है वो खत्म होने लग रहे हैं, साथ ही साथ जो कार्बन तत्व है माटी का वो भी कम होने लग रहा है। और इस अभियान के तहत जो है कृषि वैज्ञानिकों को अधिकारियों की 1600 से ज्यादा टीमें सीधे गांव में जाकर किसान भाइयों के साथ संवाद कर रही है और किसानों को जो है सोइल हेल्थ कार्ड यानी कि जो मृदा परीक्षण है उसके आधार पर ही संतुलित मात्रा में खाद डालने की सलाह दी जा रही है। इसी के साथ भाइयों जो किसान भाई हैं वो जरूरत के हिसाब से सही मात्रा में खाद डालें और उनकी जेब का इसमें खर्च भी बचेगा और जमीन की ताकत भी लंबे समय तक बनी रहेगी। साथ ही जो जैविक खेती है उसकी तरफ भी हमने जाना होगा, जो प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ भी हमने बढ़ना होगा। और मिट्टी सुधारण के साथ साथ भाइयों यह अभियान जो है किसानों को बदलते मौसम के हिसाब से स्मार्ट फार्मिंग करने के तौर पर जो है तौर तरीके भी सिखा रहा है। और अभियान के दौरान भाइयों किसान भाइयों को भारी रसायन की जगह जो है वो ड्राई कोडरमा और वर्टिसिलियम जैसे जो जैविक इनपुट है और हरी खाद है उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाने लग रहा है। और इसके अलावा भाइयों गिरता जो भू जल स्तर है उसको देखते हुए भी ड्रिप इरिगेशन यानी कि बूंद बूंद पानी जो है हमने पौधे की जड़ में देना है या स्प्रिंकलर सिंचाई फुहारा सिंचाई के माध्यम से और ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी यानी कि बूंद बूंद से जो हमने पानी की बचत भी करनी है और उससे हमारी जो उपज है वो भी बढ़े, क्योंकि जब हम बूंद बूंद पानी जब पौधे की जड़ में डाल रहे हैं तो उससे जो खरपतवार है वो नहीं बढ़ पाता और किसान भाइयों को ज्यादा लाभ मिला है। इस तरह के जो आधुनिक जल संरक्षण जो तकनीक है इनकी भी ट्रेनिंग किसान भाइयों को दी जाने लग रही है। तो इसके साथ ही जो गाँव में एक पेड़ माँ के नाम इस थीम के तहत भी बड़े स्तर पर पौधों की भी जो है लगाए जा रहे हैं ताकि जो हमारे प्रदेश में जो हरियाली है वो कम होती जा रही है वो हरियाली भी हमने बढ़ाकर रखनी है। और इसी अभियान के जरिए भाइयों सरकार का जो पूरा ध्यान है वो इस बात पर है कि किसान भाइयों को जो नकली खाद बीज है उससे भी बचाया जा सके और साथ ही जो खेती में जो मशीन है उन पर मिलने वाली जो सब्सिडी है उसकी जानकारी भी सीधी किसान भाइयों तक पहुंचाई जा सके और जो हमारे देश की जो खेती है वो पूरी तरह से टिकाऊ और मुनाफेदार बनाई जा सके। और इसी के तहत भाइयों बहुत सारी जो गतिविधि है सरकार चला रही है कि एक तो मृदा परीक्षण जरूर करवाएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं, संतुलित पोषक प्रबंधन कराएं, साथ ही प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, जल संरक्षण पर भी ध्यान देवें और उन्नत बीजों का हम उपयोग करें। साथ ही जब भी हम बिजाई करें तो बीज उपचार जरूर करें और हरी खाद और साथ ही आधुनिक बुआई तकनीक और जल संरक्षण पर आधारित कृषि पद्धतियों को बढ़ावा हम दे सकें। साथ ही यह अभियान भाइयों नकली उर्वरकों बीजों और कीटनाशकों के खिलाफ भी जागरूकता का एक बहुत बड़ा अभियान है। साथ ही किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड तथा कृषि के जो यंत्र हैं उनमें मिलने वाली जो सरकारी योजनाओं के लाभ हैं उनसे भी अवगत कराना है। और इस कार्यक्रम का इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है मिट्टी बचाओ खेती बचाओ किसान बचाओ और इसी अवधारणा के तहत जो है सरकार जो है इस पर अपनी पूरी शक्ति लगा रही है ताकि किसान भाई जो है आने वाले समय में समृद्ध बन सके। और यह अभियान भाइयों मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देने ताकि उर्वरकों का प्रयोग किसान भाई जो है वो सीमित मात्रा में करें, सही समय पर करें और सही अनुपात में करें, जिससे कृषि की लागत कम करने में, उत्पादकता बढ़ाने में और मृदा की उर्वरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। और इस कार्यक्रम में भाइयों कृषि वैज्ञानिक, ICAR संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, गांव का दौरा कर रहे हैं ताकि किसान भाइयों को शिक्षित कराया जा सके और उन्हें जो है तकनीकी सहायता प्रदान करी जा सके। और इस अभियान के अंतर्गत भाइयों सोयाबीन, धान और दलहनी जैसी जो फसलें हैं उनके लिए खेत स्तर पर प्रदर्शन भी किए जाएंगे और किसान भाइयों को लेजर लेवलर यानी कि जो भूमि समतल करने वाली जो तकनीक है उसके उपयोग और स्थानीय कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुसार जो है फसल चयन और जल संरक्षण आधारित कृषि पद्धतियों का भी प्रशिक्षण किसान भाइयों को दिया जाएगा। तो ये तो ली भाइयों जानकारी नई फसल नई उमंग के तहत खेत बचाओ अभियान।

0: पर, और एम लेवन जानकारी प्राकृतिक खेती में बीजामृत बनाने की विधि और उसके उपयोग पर। किसान भाइयों, बीजामृत ये एक अच्छा जीवाणुनाशक है और इसके प्रयोग से बीज और पौधशाला में लगने वाले जितनी भी बीमारी है उन्हें हम नियंत्रित कर सके हैं, और एक प्राकृतिक तरीका है जिससे हम बीमारी जो हमारी पौधशाला है उसमें जो बीमारी लगा है उन हम नियंत्रित कर सके हैं। तो बीजामृत बनावा किस तरह, तो इसके लिए भाइयों जो जरूरी सामान है वो है 4 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र और 10 ग्राम चूना और 5 ग्राम हल्दी पाउडर, साथ में 100 ग्राम हमने गुड़ और जमीन के किनारे की 1 मुट्ठी हमने मिट्टी लेनी है, और कोशिश करनी भाइयों मिट्टी हमने वह लेनी है जिसपे उर्वरक या किसी कीटनाशक का छिड़काव ना हो। साथ ही 15 लीटर आकार का एक ड्रम ले लें और गाय का भाइयों 1 किलो गोबर और सूती कपड़े में लेकर उसने बांध लें और 4 लीटर पानी में इसने 12 घंटे तक डुबो कर रखें। फिर भाइयों इसमें 50 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम चूना रात भर भिगो कर रखें और अगली सुबह भाइयों कपड़े में बंद हुए जो गाय का गोबर है उसमें पानी में 3 बार उसने अच्छी तरह से निचोड़ लें, और फिर भाइयों इस पानी में खेत की मेड़ या बांध की वह जो है 1 मुट्ठी मिट्टी जो है अच्छे से इसमें मिला लें, और जो घोल तैयार हो भाइयों उसमें फिर हमने 1 लीटर गाय का मूत्र, 5 ग्राम जो हल्दी थी वो डालनी है, 100 ग्राम जो हमने गुड़ लिया था वो भी डालना है, और जो हमने रात भर जो चूने का पानी बनाकर रखा था वो भी इसमें मिलाना है, और ये सब घोल मिलाकर जो हमारा बीजोपचार खातर तैयार हो जाएगा। अब जो बीजामृत हमने तैयार कराया है इसका हमने फसल का उपचार किस तरह कर, तो बीज का उपचार हमने किस तरह करना है, इससे किसी भी फसल के भाइयों बीज या पौधे हैं उसको उपचार कराया जा सकता है। अच्छी तरह से बीजों को पहले जमीन या बोरे पर फैला लें और उसने उपचारित करें और हाथ अच्छी तरह से इसने मिलावत ताकि जो है हर एक दाने पर जो है बीजामृत लग जाए और उसने फिर छाया में सुखाड़ दें और उसके बाद भाइयों इसकी हम बुआई कर सके हैं। और पौधे की जड़ को भाइयों 10 से 15 मिनट जो है डुबाने के तुरंत भाई हम इसकी रोपाई कर सके हैं, और बीज या जो पौधा है उपचार लहसुन पानी से तुरंत बनाकर उसके प्रयोग के लिए भाइयों 10 ग्राम लहसुन का पेस्ट और 100 मिलीलीटर इसमें पानी में घोल कर, और बीज ने जो भाइयों 15 मिनट तक इसमें डुबो कर रखें उसके बाद बुआई या रोपाई हम कर सके हैं। साथ ही भाइयों देसी गौमूत्र एक जीवाणुनाशक कीटाणुनाशक विषाणुनाशक और संजीवक के रूप में भी काम कर रहा है जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश और अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो 1 लीटर गौमूत्र, 500 ग्राम जो है गाय का गोबर और एक जमीन के किनारे की 1 मुट्ठी मिट्टी ले लें और इसका घोल बनाकर 15 मिनट के लिए भाइयों बीज इसमें डुबो कर रखें और उसके बाद बीज की बुआई या हम रोपाई कर सके हैं, या फिर भाइयों 1 गुना देसी गाय का मूत्र और 5 गुना उसमें पानी मिलाकर बीज या जो अन्य रोपाई का जो सामान है उसमें 15 मिनट तक जो है इसमें डुबो कर रखें और बीज निकाल कर छाया में सुखा लें, उसके बाद बीज की बुआई या रोपाई करी जा सके है। तो ये तो ली भाइयों जानकारी प्राकृतिक खेती में बीजोमृत बनाने की विधि और इसके उपयोग पर। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: उतला बोल रहा है,
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: और भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब होगा भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनिए सारे बाण भाइयों, एक बार फिर विनोद भाई की राम राम। भाइयों, आज है दिन वीरवार और वीरवार नाम ले कहा कार्यक्रम थारी पसंद। और थारी पसंद में जो है भैया की जो फरमाइश है, जो पसंद है, भैया की जो संदेश है, वो कार्यक्रम में शामिल करेंगे, लेकिन एक अंतराल के बाद।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: और भाइयों, आप सुन रहे कार्यक्रम थारी पसंद। और थारी पसंद कार्यक्रम का जो पहला संदेश आया है, वो आया है गांव उगाड़ा, जिला अंबाड़ा, हरियाणा से। और लिखने वाले भाई हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और इनके परिवार के सदस्यगण। साथ ही भाइयों, अगला जो संदेश आया है वो आया है खुर्जा, उत्तर प्रदेश से। और लिखने वाले भाई हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। और अगला संदेश आया भाइयों गांव राम सावला, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। और लिखने वाले भाई हैं ब्रिजपाल, श्यामवीर, पूजा, मोनी

सोनम, उन्नति, उत्सव और इनके परिवार के सदस्यगण, और इनकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनाऊं भाइयों एक रागणी।

जब होए यार के दर्शन एकदम मन चित हो गया, परेशान भर गया दिल में उमाया। ये रखिए आदर मान कर्या से मारे पे।

0: ये तो सुनी भजन रागणी और गायक कलाकार थे राजकिशन अगवानपुरिया।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: और भाइयों, एक करें चर्चा विश्व ऑटिस्टिक प्राइड डे पे। भाइयों, हर साल जून के महीने की 18 तारीख ने ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जावे है। और ये जो ऑटिज्म है, ये एक दिमागी डिसऑर्डर है जो ज़्यादातर बच्चों में ही देखने मिला है। और इसमें जो पीड़ित बच्चा है वो लोगों तक घुलने मिलने में और बोलने चालने में दिक्कत का सामना कर रहा है। साथ ही

0: एक ही बात में जो बच्चा है वो बार बार दोहरावा है, चुपचाप घंटों तक बैठे रहना भी इस रोग का लक्षण है। और जाहिर है कि ये जो बीमारी है इसमें ना सिर्फ व्यक्ति का जो व्यवहार है बल्कि उसके शरीर के विकास पर भी जो है असर पड़ा है। तो जो विश्व ऑटिस्टिक दिवस है ये हर साल मनाया जावा है, और जो ऑटिस्टिक प्राइड डे है इसको मनाने का जो मकसद है भाइयों वो है ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के विकास और उनके जीवन की जो संभावनाएं हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि भाइयों ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि जो दिमागी एक बीमारी है, और इसमें जो बच्चा है वो सामान्य से थोड़ा सा अलग नजर आवे है। लेकिन अगर अच्छा माहौल मिले, अच्छे बच्चे का ध्यान रखा जावे, उसे कुछ जो है कुछ एक्टिविटी उससे करवाई जावे, तो इस चीज़ को भी जो है ठीक करा जा सके है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने खातर लोगों में जागरूकता बढ़ाना, यही इस दिन को मनाने का मुख्य मकसद है, और बस इसी उद्देश्य से जो है हर साल ये दिन मनाया जावे है। और ऑटिस्टिक प्राइड डे को मनाने की जो शुरुआत है वो ब्राज़ील से हुई थी, और पहली बार 2005 में जो है ये दिन मनाया गया, और उसके बाद हर साल भाइयों 18 जून को जो है दुनिया भर में ये दिन मनाया जावे है। ऑटिज्म के अगर लक्षण की बात करें तो लोगों तक घुलने मिलने में कठिनाई महसूस होना, शब्दों को ठीक प्रकार तक ना बोल पाना, मन ही मन में जो है बड़बड़ाते रहना, साथ ही एक ही बात को बार बार बोलते रहना या रिपीट करना, या फिर बार बार एक ही काम को दोहराना, या फिर जो बच्चा है वो अकेले में चुपचाप बैठा रहेगा और शरीर के अंगों का भी इसमें ठीक तरह से विकास नहीं हो पाता। और भाइयों वैसे तो जो ऑटिज्म है इसका कोई जो मेडिकल साइंस है उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे बच्चे में तो डॉक्टर तो जरूर मिलावे, क्योंकि डॉक्टर है जो कुछ एक दवाएं और जो थेरेपी है उसकी सलाह जरूर देंगे, जिससे पीड़ित बच्चे में जो है नई नई स्किल जो है उसमें सिखाने पर जोर दिया जाओगा, जिससे बच्चे का जो व्यवहार है उसमें बदलाव आओगा और उसकी जो सामाजिक जो जीवन है वो बेहतर बनाया जा सकेगा। और ध्यान रखें कि जो हर एक बच्चा है उसमें इसके लक्षण अलग अलग नजर आए हैं, इसलिए जो इस के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं या जो उसके सही जो इसको जानकार हैं उसके उनसे सलाह जरूर ले वह, और सलाह के बाद जो है इसका ट्रीटमेंट या जो भी डॉक्टर जो सलाह दे वह उसका हमने पालन जरूर करना है, ताकि ऐसे बच्चों का जो है सामाजिक विकास कराया जा सके। तो ये तो भाइयों करी चर्चा ऑटिस्टिक प्राइड डे पे।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: बदलो बदलो आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: और भाइयों, ये लेवा जानकारी अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस पे। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस भाइयों हर साल 18 जून में मनाया जावे है, और ये दिन भाइयों लोगों को जो अपनी व्यस्त दिनचर्या है, जिसमें सारा दिन भाग दौड़ है, उससे हटकर जो है प्रकृति की गोद में समय बिताने और अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों के साथ खुले में प्रकृति का आनंद लेने और साथ ही जो है खुले में भोजन का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करें है। और पिकनिक जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति भाइयों फ्रांसीसी शब्द से हुई, और इसी अवधारणा को फ्रांसीसी क्रांति और जो विक्टोरियन युग है उसके दौरान लोकप्रियता भी मिली, जब लोग प्रकृति के बीच स्वतंत्रता का अनुभव करने और जो पारंपरिक शिष्टाचार है उससे दूर रहने की बजाय बाहर निकलकर खुले में भोजन करने लगे। और इस अनौपचारिक अवकाश का जो मुख्य उद्देश्य है भाई, वो है तनाव भरी जिंदगी तक बाहर निकलकर कुछ पल सुकून के, अपने परिवार, अपने घर वालों के साथ प्रकृति की गोद में आनंद लेने के है। और अपने नज़दीकी किसी भी कोई पार्क है, झील है, या कोई पहाड़ है, या हरियाली वाली जो जगह है उस जगह पर जाकर कोई सूती चादर है या जो चटाई है वो बिछाकर और साथ में जो है जो आपकी पसंद के जो भोजन है उसका आनंद लेना। साथ ही जो है अगर आप घर तक बाहर नहीं जा सकते तो अपने ही जो लिविंग रूम है उसमें ही एक कंबल बिछाकर और कुछ जो है अपनी पसंद का कुछ भी खाना बनावें और खावें, साथ में जो है एक जो पसंद का जो संगीत है वो भी बजावें, तो इस तरह भी जो हम इस दिन का आनंद ले सकें हैं। तो इस दिन का मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति और अपने घर परिवार वाले जो सदस्य हैं, अपने पड़ोसी हैं या अपने रिश्तेदार हैं, उनके साथ मिलें और तनाव मुक्त जिंदगी जीवें। और भाइयों, आप सुन रहे हो कार्यक्रम थारी पसंद, और थारी पसंद का भाइयों अगला संदेश आया है गांव जगुड़ी जिला यमुनानगर से लिखने वाले भाई हैं चौधरी रणधीर सिंह बांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन और इनके परिवार के सदस्यगण। और भाइयों अगला संदेश आया है गांव तेजामोड़ी जिला अंबाड़ा से, और लिखने वाले भाई हैं बंसीलाल संधू, कमल, प्रदीप संधू, कबीर और इनके परिवार के सदस्यगण। और साथ ही भाइयों एक संदेश और आया है गांव ठोल जिला कुरुक्षेत्र से, लिखने वाले भाई हैं राजीव कुमार, विवेक, रितेश और इनके परिवार के सदस्यगण। योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अंबाड़ा से लिखने वाले भाई हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, गुरकीरत, मन्नत, गुरशब्द सिंह, राहुल और इनके परिवार के सदस्य। और इनकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनाओ भाइयों एक फिल्मी लोकगीत।

ये तो सुना भाइयों ने फिल्मी लोकगीत और फिल्म थी जर जोरू और जमीन। और इसी के साथ भाइयों आज के ग्राम संसार कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जय जवान।

कार्यक्रम जय जवान सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को योग माया की प्यार भरी नमस्कार। आइए साथियों, कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म अजहर के इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
9: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
8: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
9: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
9: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
1: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, मैं हूं सागर और इस समय जो आप कार्यक्रम सुन रहे हैं उसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार और इस कार्यक्रम को आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है ऑर्गन इंडिया। तो आदित्य जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। आदित्य जी, सबसे पहले मैं आपके बचपन के बारे में बात करना चाहूंगा। शुरू से शुरू करते हैं हमेशा, तो बताइए थोड़ा सा कि आपका बचपन कैसा था, कहाँ पर आप पले बड़े?
2: सर, मेरा जन्म कानपुर में ही हुआ है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से ही रहने वाला हूँ और वहीं पे मेरा जन्म हुआ है। मेरी पढ़ाई शिशु मंदिर में शुरुआत हुई है, उसके बाद मैंने जब स्पोर्ट्स ज्वाइन किया क्रिकेट में, तो मैंने KDMA से खेलना शुरू किया और वहीं पे मैंने शिक्षा प्राप्त की। KDMA इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ पे।
1: बचपन कैसा था आपका?
2: सर, बचपन बहुत ही अच्छा था, जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है वैसे था। बस हाँ, थोड़ा सा ये था जी, पढ़ाई का प्रेशर कम था क्योंकि हम शुरुआत से मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रखा था क्रिकेट, इसलिए मुझे पढ़ाई का प्रेशर कम रहता था, खेलने को बहुत मिलता था।
1: ठीक है, तो आप एक एक्टिव स्टूडेंट थे और घर वालों को सपोर्ट था?
2: बहुत ज्यादा सपोर्ट था।
1: परिवार में कौन कौन है और कैसा सा माहौल था घर का, थोड़ा सा वो और बताइए।
2: सर, मेरे घर पे मेरे पापा हैं, मेरी माता जी हैं, अभी मेरे पापा हैं, मम्मी हैं और दादी हैं, तीन लोग हैं फैमिली में। और माहौल ठीक है, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है वैसे ही माहौल है।
1: तो इसका मतलब ये है कि काफी ओपन रहा होगा आपके घर का माहौल, काफी एक्सेप्टिंग रहा होगा।
2: जी जी,
1: तो इसीलिए शायद अपना जो पैशन है स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का, वो आप परस्यू कर पाए।
2: नहीं, पैशन उसकी वजह एक और थी कि पापा को भी स्पोर्ट्स पसंद था, तो इसलिए और हमको सपोर्ट मिला उसमें खेलने के लिए, तो सबसे प्लस पॉइंट ये भी रहा।
1: तो ये जो हम बातचीत कर रहे हैं आदित्य जी, इसका मेन उद्देश्य है कि कई बार ना हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बचपन में हो जाती हैं या कुछ चीजों को नजरअंदाज हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि अगर कोई भी ऐसी गलती है जो एक इंसान से होती है जो बाकी श्रोतागण अवॉइड कर सके, तो वो अपने पहले ट्रांसप्लांट के पहले के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या ऐसी कोई गलती थी जो आपको याद आ रही हो या कुछ ऐसा हुआ हो आपके एंड पे?
2: जी जी सर, एक्चुअली क्या था कि मैंने अंडर 16 स्टेट भी खेला है, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है पाली मृगा ट्रॉफी में जी, और मेरे इंडिया प्लेयर हैं इस समय जैसे कुलदीप यादव, अंकित राजपूत, ये सब मेरे बैचमेट हैं, साथ के ही प्लेयर हैं। तो उस समय क्या था कि सर, मैं सुबह मॉर्निंग से प्रैक्टिस के लिए निकलते थे और शाम को ही पहुँचते थे, तो बाहर का खाना पीना थोड़ा ज्यादा हो गया। जब कोई जैसे शरीर में इन्फेक्शन लगा और स्पोर्ट्स में इतना लिप्त थे कि उस पर ध्यान भी नहीं दिया कि किसी तरह का कोई शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि छोटे थे उतना ध्यान नहीं दिया और हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे इतने ज्यादा डॉक्टर्स भी अवेयर नहीं थे कि पहले टेस्ट कराएं बाद में दवाइयाँ दें, इस वजह से ये भी एक सबसे बड़ा कारण रहा।
1: तो चलिए बात करते हैं आपके पहले ट्रांसप्लांट, कब की ये बात है और क्या सिम्टम आने शुरू हुए और कितने टाइम तक सिम्टम्स रहे?
2: सर, एक्चुअली मुझे सिम्टम्स स्टार्ट हुए 2009 में, मेरे पैर में सूजन आई और मेरे हाथ के नीचे सूजन आना चालू हुआ। मुझे पता नहीं था कि ये किस चीज का, एक्चुअली मेरे फैमिली में भी किसी को भी ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, तो स्टेरॉइड थी शायद उसमें, तो उन्होंने दी। उसके बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हाँ बेटा थोड़ी बहुत सूजन आती है, उसके बाद वो सूजन बढ़ती ही चली गई। बाद में जब टेस्ट कराया तो उसमें मेरे प्रोटीन लीकेज था। तो 2010-2011 में मेरा इलाज चलता रहा SGPGI लखनऊ से, वहाँ पे प्रोटीन मतलब लीकेज धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ता रहा। 2011 में मतलब ये नौबत आ गई कि डायलिसिस पे मुझे आना पड़ा। एक्चुअली मेरे माता और पिता दोनों का मेरा ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, तो मेरा पहला ट्रांसप्लांट जो हुआ स्वैप हुआ 2013 में। उसके बाद 2016 में उसमें फिर से प्रॉब्लम आ गई, वो रिजेक्शन हो गया, फिर से मैं डायलिसिस पे आ गई।
1: आप कह रहे हैं 2011 में आपकी बॉडी ने प्रॉब्लम सिम्टम आपको देने शुरू कर दिए थे?
2: प्रॉब्लम के सिम्टम्स आ गए तो 2010 की स्टार्टिंग में ही, 11 में तो सर उसने मतलब डायलिसिस वाला रूप ले लिया था।
1: 2010 की स्टार्टिंग में सिम्टम आने शुरू हो गए और आपने इंस्टेंटली डॉक्टर को दिखाया था?
2: हाँ हाँ सर, दिखाया था, लेकिन प्रोटीन लीकेज बहुत था, झाग बहुत था यूरिन में, यूरिन का कलर चेंज हो गया था उस वक्त।
1: तो इसकी वजह बताइए क्यों हो रहा है सब?
2: उस समय मतलब बायोप्सी के लिए बोला सर ने, बायोप्सी करी, उसके बाद सर ने सीधे बोला कि CKD है, कुछ बताया नहीं उन्होंने, बस इतना बताया कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, बट यूरिन प्रोटीन लॉस की प्रॉब्लम। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कई बच्चों के बचपन से भी होती है।
1: और आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी और आप खेलों की तरफ थोड़ा अपना रुझान रखते थे, तो इसलिए चीजों को जाने दिया। आपका ये कब पता लगा कि किडनीज ने काम करना बंद कर दिया है?
2: सर मतलब डॉक्टर PGI के जो डॉक्टर अमित गुप्ता थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बातों बातों में बता दिया था ये दिन आने वाला है, थी, थोड़ा समय 1-2 साल तक हम लोग रोक पाएंगे इसे। वो चीजें थी,

0: 2011 में डायलिसिस का बिल्कुल मतलब ऐसा स्टार्ट हो गया था क्रैकिंग, तो मेरे डॉक्टर जो लोकल डॉक्टर थे उन्होंने भी बोल दिया था, बट मुझे पता नहीं था कि डायलिसिस कराना जरूरी, नहीं तो आपकी जान चली ही जाएगी। और मेरे पास किडनी का जो ट्रांसप्लांट के लिए किडनी नहीं थी, ना मदर का ब्लड ग्रुप सेम था, और हम लोग को स्वैब के बारे में या कैडबेरिया इन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था कानपुर में।
1: तो कितने टाइम तक आप उसको खींचते गए बिना डायलिसिस?
0: सर मैं अप्रोक्सिमेटली मैंने उसको खींचा है 6 से 8 महीने।
1: 6 से 8 महीने इतना बड़ा रिस्क आपने लिया कि डायलिसिस नहीं कराया?
0: मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा पहला डायलिसिस हुआ है 32 क्रैकमेंट पर, 32।
1: और ये आपको कराना पड़ा एम्स में आके?
0: एम्स में एक्चुअली सर को दिखाया डॉक्टर डी भौमिक को, उन्होंने बोला कि बेटा हमारे यहाँ पेशेंट एडमिट होते हैं उन्हीं की होती है, उन्होंने बोला कि आप जाके जल्दी से जल्दी इसकी डायलिसिस कराइए। तो मैंने उसके बाद वो डायलिसिस करा ही ली थी, मतलब बाहर जाके अपने कानपुर में लीलावड़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर निर्भय कुमार के अंडर में कराई थी।
1: और ये डायलिसिस का सिलसिला कितना टाइम चला?
0: सर वो अप्रोक्सिमेटली चला 2.5 साल।
1: 2.5 साल यानी कि 2011 से 2013 के मिड तक समझे?
0: हाँ।
1: और ट्रांसप्लांट कब हुआ? 2013 में पहला। और ये कैसे हुआ, थोड़ा सा उस प्रोसेस के बारे में बताइए।
0: सर एक्चुअली ब्लड मुझे ज़्यादा जानकारी थी नहीं, तो स्वैब के बारे में मुझे बताया, PGI भी जाते रहते थे हम लोग बीच में दिखाने के लिए। PGI में ही एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि अपना रजिस्ट्रेशन करा दो, अगर आपके फादर या मदर किडनी देना चाहते हैं तो एक स्वैब भी होता है। उस समय 2011 में तो उन्होंने बोला कि, तो मेरा फोर्टिस हॉस्पिटल से एक डोनर थे गोरखपुर के, उनसे मतलब बातचीत हुई, मिल गया, तो उनकी जो मदर थी उन्होंने मुझे दिया था, हस्बैंड वाइफ थे वो, और मेरे पापा ने उनके हस्बैंड को किडनी दी थी, वो भी लास्ट कोरोना काल में नहीं रहे, बट उनकी किडनी बहुत अच्छी काम कर रही थी, उनको मतलब उनका ट्रांसप्लांट पूरा 10 साल अप्रोक्सिमेटली चला ही, 9 साल कोई दिक्कत नहीं उन लोगों
1: को। उसके बाद का जीवन कैसा था पहले ट्रांसप्लांट के बाद?
0: सर बहुत ही नॉर्मल था, मैंने अंपायरिंग की परीक्षा पास की क्रिकेट में, उसके बाद क्योंकि मैंने पढ़ा भी क्रिकेट ही है, खेला भी क्रिकेट है, तो उसके बाद खेल तो सकता नहीं था क्योंकि इतना ज्यादा अंदर ताकत नहीं रह गया था, फ्रेंडली मैचेस और वो सब अलग है, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के पावर नहीं रहती थी। मैंने अंपायरिंग की परीक्षा पास की, उसके बाद थोड़ी बहुत अंपायरिंग और क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट नॉर्मल तरीके से। फिर 2016 में मुझे फिर से प्रॉब्लम आई, और वो इस बार क्या हुआ कि इस बार जो प्रॉब्लम आई, मैं 40 में डॉक्टर सिंगल के अंडर में था, समझ लीजिए कि इस बार हम लोगों ने उस तरह की गलतियां नहीं की जो पहली बार में की थी, इस बार मैंने 7 में ही पहली डायलिसिस करा ली।
1: 2013 से 2016 के बीच में आपका जीवन ठीक चल रहा था?
0: बिल्कुल नॉर्मल था, बस वही बताया ना सर कि 15-16 के बीच में थोड़ा बहुत क्रैकिंग अप हुआ, पुआ पुआ बढ़ता गया, और वो प्रोटीन से झाग आने लगा मतलब।
1: और ये कब आना शुरू हुआ था?
0: ये वही मान के चलिए कि 15-16 के बीच।
1: 15-16 के बीच में तो आपको समझ में आ गया था कि कुछ प्रॉब्लम है?
0: हाँ, बायोप्सी भी सर ने किया था, सर ने बताया।
1: और उस टाइम पर आपको बॉडी में और कोई सिम्टम नहीं था?
0: नहीं नहीं सर, नॉर्मल मतलब बॉडी नॉर्मल ही थी बिल्कुल, क्योंकि सूजन वूजन कहीं कुछ था नहीं, यूरिन पास हो रहा था।
1: थोड़ा सा आपके पेरेंट्स के बारे में भी जानना चाहूंगा, ट्रांसप्लांट के बाद उनका जीवन कैसा है, कि किडनी दोनों की क्योंकि दे चुके हैं दोनों?
0: सर मेरे पापा तो डेली मतलब ये आप मान के चलिए कि 12 घंटे काम करते हैं कम से कम, और मम्मी ग्रहणी हैं, कोई वैसे तो घर पे है भी नहीं, वैसे पूरा घर का काम है हर चीज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो लोग कर रहे हैं। पिछले पापा का तो ट्रांसप्लांट किडनी दिए हो गया करीब मेरे हिसाब से 11-12 साल, और माता जी को भी 7 साल, इसी तरह की वैसी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। वही 7 दिन उन्होंने मेडिसिन खाई थी जो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, कि आप कोई मेडिसिन नहीं, किसी तरह की बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं।
1: और आपकी लाइफ कितनी नॉर्मल है उसके बाद?
0: सर मैं तो सच बताऊं, मैं तो बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जीता हूं। मैंने तो बता तो रहा हूं कि मैं पहले टेंशन लेता भी था, मैंने तो अब तो बिल्कुल ही छोड़ रखा, क्योंकि अपने हाथ में जो चीज है नहीं उस चीज के बारे में क्या सोच, टाइम के दवा खा लेते हैं और उसके बाद अपना काम करने में लग जाते हैं।
1: तो आप क्या कह सकते हैं ये बात कि जो आप दूसरी पारी खेल रहे हैं ये बहुत शानदार है और बहुत मजा आ रहा है, और शायद कहीं ना कहीं आपका नजरिया जीवन को लेकर बदला है?
0: सर बिल्कुल मैं इस बात को कह सकता हूँ, और मैं इस चीज को महसूस भी कर सकता हूँ, और लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो इस तरह का कुछ कर सकते हैं तो जरूर ट्राई करें, डरे नहीं। ट्रांसप्लांट आपको जीवन देता है, आपको डर नहीं देता है। लोगों को ये लगता है कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, जैसे अभी हम ही है सर, आपको मैं बताता हूँ, मेरा पहला ट्रांसप्लांट सिर्फ 3 साल चला, कि आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बोला कि 1600 लोग नहीं रहे डायलिसिस पे जो थे, तो उसमें कम से कम 800 लोग उन 3 साल में भी नहीं रहे होंगे, एटलीस्ट 3 साल तो उसने मुझे लंबी उम्र दी थी। एक दिन भी अगर ट्रांसप्लांट आपका चल रहा है ना, तो सक्सेसफुल ही है, ठीक है, सबकी लाइफ है। मैं 50-50 साल अभी मैं सर एक्चुअली ऑर्गन इंडिया की टीम से जब जुड़ा हूँ, टीम से कई जगह के इवेंट्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गन डोनेशन के लिए, उसमें देखता हूँ किसी की किडनी 25 साल से चल रही है, किसी की 30 साल से, किसी की 20 साल से, सब अच्छे से स्पोर्ट्स एक्टिव है, तो सब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आपके भाग्य में क्या लिखा है?

0: वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, आपको अपना कर्म करना चाहिए।
1: कोई भी ऐसी चीज आदित्य जी जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आपके मन में हो, आपके जहन में हो, तो प्लीज बिल्कुल फ्री फील करिए।
0: सर मेरे मन में बस इतना है, जैसे मैं ही हूँ ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, लोगों के मन में आपने बोला कि ट्रांसप्लांट नहीं कराते, उसकी वजह ये आती है, लोगों को ये लगता है कि डायलिसिस में ही पैसा जा रहा है और जो ट्रांसप्लांट मेडिसिन है वो भी बहुत महंगा है। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं जैसे ज्यादा एजुकेशन नहीं है, कोई जैसे मेरी छोटे में ही खराब हो गई किडनी, तो हम उतना पैसा अर्न नहीं कर पाते हैं, तो मेडिसिन बहुत महंगी होती है या कुछ होता है, इस वजह से लोग और घबराते हैं। तो पहले तो मेडिसिन सस्ती होनी चाहिए, सरकार से ये गुहार है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई एनजीओ ऐसा जो किसी पेशेंट की कुछ हेल्प मत करे, सिर्फ मेडिसिन की ही हेल्प कर दे, या उनको इस तरह का कोई रोजगार दे, मतलब जो उनके लेवल का हो या काम ले ले, तो मेडिसिन दे दे, किसी को फ्री मत दे। बट क्योंकि मेडिसिन हम लोग की लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए भी कुछ लोग डरते हैं।
1: मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने मन की बात यहाँ पर रखी। और कोई चीज अगर ऐसी जो आप कहना चाहते हो बाकी लोगों से ऑर्गन डोनेशन को लेकर?
0: सर मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, से रिक्वेस्ट है, आपके डोनेशन से किसी की लाइफ बच सकती है। आप कोई भी ऑर्गन डोनेट करते हैं, वो एक नहीं बल्कि पांच पांच लोगों को कभी कभी जीवन दे जाता है। तो आप प्लीज आगे बढ़िए, हम जैसे लोगों को जीवन को बढ़ाइए, हम जैसे लोगों के चेहरों पे खुशी लाइए। मैं नहीं, हजारों लाखों लोग आपके सपोर्ट के लिए हम लोग खड़े हैं। प्लीज हम सबको सपोर्ट करिए और हमारी लाइफ सेव करिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया और अपने मन की इतनी सुंदर सुंदर बातें आपने लोगों तक पहुंचाई। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि जो इस शो से हम उम्मीद करते हैं, इस शो के थ्रू जो हम मूल्य या वैल्यूज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो हम पहुंचा पाए। उद्देश्य यही है कि जितना हो सकता है उतने ज्यादा लोगों को हम जागरूक करें और बताएं कि ये जो अंग दान है ये कितना इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, और न केवल बात होनी चाहिए बल्कि लोग उठ के सामने आए, प्लेटफॉर्म साइन करें और ज्यादा से ज्यादा इसको जो है आगे लोगों को बताएं, उनको जागरूक। अब इसी के साथ इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों से, तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार आदित्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह जुड़े रहिएगा हमारे साथ, तो ऑर्गन इंडिया ऐसे ढेर सारे शोज आपके लिए लेकर आता है, और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ऑर्गन इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब इसी नोट पर मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। नमस्कार, धन्यवाद,
2: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में।
3: दोस्तों अंगदान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर संपर्क कर सकते हैं। अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सबको प्रेरणा दें।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
3: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कार्यक्रम कुछ बातें ही कुछ गीत लेकर मैं हाजिर हूं आप सभी की रेडियो दोस्त योग माया। सभी श्रोता साथियों को तहे दिल से प्यार भरी नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे 1993 में रिलीज हुई शाहरुख खान, काजोल और शिल्पा शेट्टी द्वारा अभिनीत सुपरहिट फिल्म बाजीगर की। इस फिल्म के सभी गाने बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे और इस फिल्म का जो शानदार संगीत है वो दिया था अनु मलिक ने। एक आइकॉनिक डायलॉग आप सभी को आज भी याद होगा जो हमें इस फिल्म से ही मिला था, वो डायलॉग है, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोता साथियों, फिल्म बाजीगर की कहानी एक ऐसे युवक के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने परिवार के विनाश का बदला लेने के लिए खतरनाक और हिंसक रास्ता चुनता है। यह एक सस्पेंस थ्रिलर और प्रतिशोध की कहानी है। अजय शर्मा, जिसका किरदार शाहरुख खान निभा रहे हैं, एक सीधा साधा लड़का है जो अपनी मानसिक रूप से बीमार माँ राके गुलजार हैं इनकी भूमिका में के साथ रहता है। अतीत में अजय के पिता विश्वनाथ शर्मा की एक बड़ी कंपनी थी। उनके एक भरोसेमंद कर्मचारी मदन चोपड़ा ने धोखे से उनके सारे बिजनेस और संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। इस सदमे और कंगाली के कारण अजय के पिता, उसकी छोटी बहन की बीमारी से मौत हो जाती है। अपनी माँ और परिवार की इस हालत को देखकर अजय के मन में मदन चोपड़ा से बदला लेने की आग सुलग उठती है। बड़ा होकर अजय मदन चोपड़ा को बर्बाद करने के लिए एक सोची समझी योजना

योजना बनाता है। मदन चोपड़ा की बड़ी बेटी सीमा शिल्पा शेट्टी इसका किरदार निभा रही हैं। वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाता है और जब सीमा उस पर पूरी तरह भरोसा कर लेती है तो वह कोर्ट मैरिज करने के बहाने उसे इस इमारत की छत पर ले जाता है और वहां से नीचे धकेल कर उसकी क्रूरता से हत्या कर देता है और इसे आत्महत्या का रूप दे देता है। दूसरी तरफ वह अपनी पहचान बदलकर विक्की मल्होत्रा नाम से मदन चोपड़ा की छोटी बेटी प्रिया के करीब आता है और उसका दिल जीतने की पूरी कोशिश करता है।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोता साथियों, इस फिल्म में शाहरुख खान डबल रोल में हैं। एक तो अजय शर्मा की भूमिका में, दूसरा है वो विक्की मल्होत्रा की भूमिका में। विक्की मल्होत्रा बनकर प्रिया के करीब आते हैं और उसका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। प्रिया का दिल जीतते जीतते वह उसके पिता मदन चोपड़ा का दिल भी जीत लेते हैं और धीरे धीरे उनके पूरे बिजनेस पर अपना नियंत्रण बना लेते हैं। प्रिया को अपनी बहन सीमा की मौत पर शक होता है और वह अपने पुलिस अधिकारी दोस्त के साथ मिलकर गुप्त रूप से जांच शुरू करती है। धीरे धीरे सुराग ढूंढते हुए प्रिया को विक्की मल्होत्रा के असली चेहरे यानी अजय शर्मा और उसके अतीत की पूरी सच्चाई का पता चल जाता है। फिल्म के अंत में अजय मदन चोपड़ा से अपनी कंपनी के सारे कागजात वापस ले लेता है और उसे उसी तरह सड़क पर ले आता है जैसे उसने उसके पिता को लाया था। गुस्साया मदन चोपड़ा अपने गुंडों के साथ अजय पर हमला करता है। मदन चोपड़ा अजय को लोहे की रोड से गंभीर रूप से घायल कर देता है, लेकिन अजय पूरी ताकत लगाकर मदन चोपड़ा को मार डालता है। अंत में लहूलुहान अजय अपनी माँ की गोद में दम तोड़ देता है। इस फिल्म की खासियत ये थी कि इस फिल्म में शाहरुख खान को बॉलीवुड में विलेन यानी एंटी हीरो के रूप में एक बड़ी पहचान मिली और उन्हें पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला और हमें मिला एक आइकॉनिक डायलॉग जो है, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोता साथियों, इस अंतिम पेशकश के साथ ही कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो दोस्त योग माया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर बाद होंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा

0: में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी के परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

0: उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बंबई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाओ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे हैं तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म से ये गाना। सलीम बिजनौरी के बोल, डब्बू मलिक का संगीत।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान।

ज्ञान सिंह का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत दान सिंह के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन डेढ़ बरस बीत गया। दान सिंह खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि दान सिंह की प्रतिभा

0: आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दान सिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दानसिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना।
1: गोरा गोरा मुंह

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल ना जाना का निर्माण किया था वो फ्लैट में दान सिंह के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल ना जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। दान सिंह ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल ना

भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964, मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल न जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

फरमाइश गीतों के इस हसीन सफर में आज आपकी हम सफर है, आपकी रेडियो दोस्त योग माया। आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। सभी श्रोता साथियों को तहे दिल से प्यार भरी नमस्कार। आइए साथियों, कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म लव मैरिज 1959 के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी ने। संगीत है शंकर जयकिशन का, गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने। इस गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 5 कुंडी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी। मजनू का टीला से हैं कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बांडीवाला फाजिल का पंजाब से क्रियांश बागड़िया, योगेश, ओम बागड़िया, बेबी गरिमा, रजत और मनीष चौधरी। आप सभी की फरमाइश पर यह खूबसूरत गीत।

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आपका अगला फरमाइशी मैसेज हमारे पास आया है। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से फरमाइश करता है हमारे प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब सबीर राही और मेहराज जहां। गांव में ढागर निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर। आप सबने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी का गाया ये गीत फिल्म है दो बदन। इस गीत का संगीत दिया है रवि ने, गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने।

श्रोता साथियों, आइए अब सुनते हैं फिल्म आवारा से ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है, नई बस्ती गंजुंडवारा से हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान, कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता और समस्त बत्ता परिवार। सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हमारे अगले फरमाइश करता है भटिंडा रोड मंडी डबवाले से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लक्की, तानिया नारंग और रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी ओ ठाकुर, एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा। आप सबने सुनना चाहा है गीता दत्त की आवाज़ में, ये गीत फिल्म है आर पार, संगीत है ओपी नैयर का, गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोता साथियों, आइए सुनते हैं फिल्म चोरी चोरी से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा है सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग। गांव फ्रांसी हिसार से हैं राजकुमार दोदी, प्रमोद कुमार दोदी, पुष्पेंद्र कुमार। मलियाना सरदना मेरठ से हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन। धनौरी तेलीवाला से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान। और अस्तपुरा जिला मऊ से हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद रसादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आजाद अली अनवर, रिजवान परवीन और अब्दुल्ला आजाद। और जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद, रिहान, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: श्रोता साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को 101.4 MHz पर कार्यक्रम चांदनी रातें और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त योग माया। आइए बढ़ते हैं अगले फरमाइशी गीत की ओर और सुनते हैं फिल्म गमन से गीत जिसे गाया है छाया गांगुली ने। संगीत है जयदेव का, गीत के बोल है मुकद्दम मोहिदीन की। इस गीत को सुनना चाहा है गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता। इसी गीत के लिए फरमाइश आई है वडिंगखेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुशेन सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहुजा।

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोता साथियों, आइए अब सुनते हैं फिल्म काला बाजार से ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। संगीत है एसडी बर्मन का, गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है गांव टोरोवाल, जिला नवांशहर पंजाब से हैं गगनदीप ठांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी। नाभा जिला पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सुरेश, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मनवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। और इसी गीत के लिए फरमाइश आई है हमारे पास ग्राम पंजोनिया, जिला जलोन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थक और अलौकिक। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा
0: भारत। विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोता साथियों, आइए सुनते हैं फिल्म गाइड से गीत जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। संगीत है एसडी बर्मन का, गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है गांव जगुड़ी, जिला यमुनानगर से हैं रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, बीरेन, मनकीरत और मनराज।

गीत को सुनना चाहा है दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। श्रोता संघ राम हिगड़े अलोट जिला रतलाम एमपी से हैं जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़।

आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोता साथियों, अभी जो गीत आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म नीलकमल से, और इस गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई थी नीमत छोटा आजार थानेसर से हैं, श्याम शर्मा, मिली, चिराग शर्मा, राघव और तनु शर्मा, पलक शर्मा और मास्टर उद्देश्य। इसी गीत को सुनना चाहा था भागलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी, और लुधियाना मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से हैं विनोदपुरी, वीकेपुरी, अशोक, सुशील, बीके, कैलाश, नीलम, रामा, पालीपुरी, सुनील और वीकेपुरी पाठक। और आइए अब सुनते हैं फिल्म चर्च से ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है लाल माता सुदामा नगर अतलाई जिला झाड़ावल राजस्थान से हैं, हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन, शोभा, कपिल, नैना और सत्यनारायण तथा फुंदीबाई बागरी। आप सभी की फरमाइश पर ये खूबसूरत की।
3: गुड नाइट।
4: हाँ, गुड नाइट।
3: अच्छा, गुड नाइट।

इस अंतिम पेशकश के साथ ही कार्यक्रम चांदनी रातें अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो दोस्त योग माया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर बाद होंगे हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल-पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार

के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।